चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी सांस हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे हम? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। और जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग

मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है पागल

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते है राधा का प्रेम, राधा का प्रेम। कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार,

ऐसी शिरा श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम की। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: क्या जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, या फिर हम अपनी मेहनत और डिसीजन से अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं? ये सवाल हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हम बात करेंगे डेस्टिनी और एफर्ट के बीच के कनेक्शन पर। क्या हम कंट्रोल में हैं या सब कुछ पहले से डिसाइड है? और इसी कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है या हम अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। और कुछ हद तक तो हम बनाते हैं और बहुत कुछ लिखा भी होता है। जो हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। जो भी हमने किए हैं पास्ट में कर्म, वो भी

0: हमारे साथ चलते हैं और हम आज जो हम कर रहे हैं वो भी हमारी डेस्टिनेशन को बनाता है, हमारी लाइफ को सेट करता है। जैसे कई बार जो जन्म हुआ हमारा वो हमारी पास्ट की लाइफ के कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी बच्चे का किसी ऐसे घर में जन्म हो गया है जहाँ पर कोई भक्ति नहीं करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, वहाँ का माहौल बहुत नेगेटिव है, तो वो बच्चा अपने कार्मिक अकाउंट के साथ तो आया, लेकिन इस जन्म में उसने अगर अच्छा अपना पुरुषार्थ किया, उसका रुझान होने लग जाता है कोई ऐसी चीज़ों की तरफ, तो भक्ति की तरफ या पूजा पाठ की तरफ, तो वो अपने घर के एटमॉस्फेयर को भी बदल देता है, सब को चेंज कर देता है। कुछ बच्चों का जन्म गरीब घर में होता है लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर वो अपनी एक उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो जो जन्म हुआ वो ठीक है, कार्मिक अकाउंट था वो पास्ट का हमारे हिसाब से, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो मेरी डेस्टिनेशन को बना रहा है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, बार बार हमारे अच्छा करने पर भी गलत मिल रहा है, हम कह देते हैं पता नहीं मेरे कौन से जन्म का कर्म था।
1: Exactly.
0: वो ठीक है हमने ये कहा, लेकिन आज भी तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं? अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं तो कल मुझे अच्छा ही मिलेगा।
1: Exactly.
0: जैसे एक बार अकबर बीरबल की बात सुनाते हैं कि अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसी मुझे दो पर्सनालिटीज लाके दो जिसका आज भी अच्छा, कल भी अच्छा और आने वाला भी अच्छा हो, मतलब बीता हुआ कल भी अच्छा हो और आगे आने वाला भी, और एक ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसका पीछे भी पूर्व जन्म भी उसका खराब रहा, आज भी खराब है और आगे भी वो खराब कर रहा है। तो वो दो फीमेल्स को लेके आए, एक वो थी जो कि वैश्या का काम करती थी और एक वो थी जो भक्त थी।
1: जी।
0: तो कहा जो भक्त को कहा, ये पूर्व जन्म में भी इसके अच्छे कर्म थे जो आज ये भक्त बनी है, भक्ति भाव में है, पूजा पाठ कर रही है और आज भी अच्छे कर्म कर रही है जिससे आगे भी इसका अच्छा ही जीवन होगा।
1: जी।
0: और एक जो वैश्या को लेके है बोला पीछे भी इसके कुछ कर्म का खाता था जो इस समय इसको ऐसे कर्म करने पड़ रहे हैं और आज भी ये वही कर्म कर रही है जिससे इसका आगे का भी जीवन वो खराब हो जाएगा, लेकिन आज हमारे हाथ में है, हम चाहें तो वो बदल सकते हैं। अगर वो पुजारण गलत काम करने लग जाए तो उसका भविष्य खराब हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर वो जो गलत कर रहे हैं वो सही करने के लिए दृढ़ निश्चय कर ले, अपने जीवन के अंदर एक आत्मसात कर ले कि मुझे अब गलत रास्ते, जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे गलत नहीं करना है, तो वहां से फिर मेरी डेस्टिनेशन बदलनी शुरू हो जाती है। तो कुछ तो है ही जो पीछे भी है, जो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ है जो हम बनाते हैं, और ये कहें कि बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में है, हम बना सकते हैं, इस भरोसे नहीं छोड़ सकते कि लिखा हुआ है वही होगा।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो मेहनत ही क्यों करनी। इस शॉट पे आपका क्या कहना है प्रिया जी?
1: मैं ये सवाल आपकी तरफ फिर से वापस करती हूँ कि आप क्या कहते हैं?
0: मैं मानती हूँ कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी
1: यानी मेहनत करके लिखूंगी।
0: जी।
1: बहुत से लोग हैं, मेहनत करके भी कई बार ऊपर नीचे होता है और फिर वो किस्मत को दोष देते हैं। तो लेकिन फिर भी मेहनत ही सफलता की कुंजी है ये बोला गया है।
0: बिल्कुल।
1: और जो हमारे बड़ों ने बोला है वो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने यूं ही नहीं लिखा है। मेहनत अपनी जगह है और किस्मत अपनी जगह है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, किस्मत से आपको कौन बनेगा करोड़पति में बैठने का मौका मिल गया, आप बैठ गए हॉट सीट पे बैठ गए और आपके पास क्वेश्चंस भी आ गए और किस्मत से आपने एक दो क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। लेकिन अगर आपने पहले से मेहनत नहीं की होगी, अपना जीके लेवल नहीं बढ़ाया होगा, तो आप ज्यादा देर उस सीट पर सर्वाइव नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल,
1: यही फर्क है किस्मत और मेहनत में कि मेहनत आपको उस सीट तक ले आएगी, भले टाइम लगेगा, लेकिन किस्मत आपको वहां तुरंत ले आने के बाद वापस कर देगी क्योंकि मेहनत नहीं की थी।
0: बिल्कुल।
1: तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना है और इन दोनों की वैल्यू है। मैं ये नहीं कहती किस्मत जरूरी नहीं है, दोनों बहुत जरूरी हैं, लेकिन स्टार्टिंग इट शुड बी फ्रॉम मेहनत।
0: बिल्कुल।
1: अगर जिसने मेहनत की होगी वो किस्मत का एक टाइम है, हम सभी जानते हैं किस्मत हर समय का नहीं है, ये एक टाइम है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो मेहनत कर रहा है वो अपने टाइम का इंतजार अगर करता है मेहनत करते हुए, तो टाइम तो सबका आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो किस्मत जब आ जाएगी, टच कर देगी, तो उसकी मेहनत रंग ले आएगी।
0: बिल्कुल।
1: और लोग क्योंकि देखते हैं सिर्फ उसकी सक्सेस को, तो कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, पर अच्छी किस्मत के लिए उसने कितनी मेहनत की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस्मत और मेहनत पैरेलल में जरूर होने पर भी स्टार्टिंग हमें मेहनत से करनी है और जो व्यक्ति मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि किस्मत अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिला देते हैं, अच्छे लोगों से मिला देते हैं, चलो शॉर्टकट्स भी दिला देते हैं, लेकिन मेहनत मेरे अंदर स्किल डेवलप करती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती है। अगर मैं फेल होता हूं तो मेरी मेहनत मुझे उससे ऊपर उठना सिखाती है, लेकिन किस्मत मुझे और नीचे गिरा देगी। जो किस्मत के आधार पर बैठा है, फेल हो गया है, तो क्या कहेगा, है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जो मेहनती होगा वो उस हार को भी फिर से टर्न करने की चेष्टा में लगा रहेगा। तो ये हमें चीजों को बहुत ध्यान देना है और अपनी मेहनत के साथ अपनी किस्मत को चमकाने का विश्वास अपने अंदर रखना है।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। जो होना है वो होके ही रहेगा वाली सोच पे क्या कहना है आपका ज्योति जी?
1: जिन लोगों को कर्म नहीं करना वो ये शब्द बोलते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा।
0: जी,
1: क्या होना है ये हमें पता तो है ही नहीं, तो हमारे लिए तो कर्म करना है। वो ठीक है कि ये चक्र चलता है, ये अध्यात्म के आधार पर देखे तो चक्र वो बहु रिपीट हो रहा है, लेकिन कल क्या होना ही मुझे नहीं पता है। कल क्या, अभी अगले पल क्या होने वाला है ये भी जब मुझे पता नहीं है, तो मेरे लिए ये एक नई चीज है और नई चीज में मुझे काम करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है। इसीलिए भाग्य से ज्यादा पुरुषार्थ को ऊपर रखा गया है।
0: जी,
1: जितना आप पुरुषार्थ करते हैं अर्थात कर्म करते हैं, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
0: जी,
1: क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। कर्म हम कर ही नहीं रहे हैं, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। आज बिना कुछ किए हमें कोई भी चीज, यहाँ तक कि अगर पानी भी मेरे मुंह में कोई डाल दे तो उसको अंदर लेने के लिए तो मुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो कोई भी काम भाग्य के भरोसे छोड़ी नहीं जाती। हाँ, हमने पूरी मेहनत की है, हमने अपना 100% दिया है और फिर अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस समय पर हम जो कर दिया उसको हम कह सकते हैं कि यही शायद लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: तो वो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है ताकि हमें गिल्ट फील ना हो।
0: जी,
1: हम जो 100% अपना दे करके भी हमें रिजल्ट नहीं मिला तो उस गिल्ट में ना चले जाए, इसके लिए ये बातें कही गई कि जो था वो हो गया, कोई बात नहीं है, अभी हमें नेक्स्ट कुछ और अच्छा सोचना है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, भाग्य के भरोसे चीजों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाग्य हम खुद बनाते हैं। हमने सिकंदर का नाम सुना और सिकंदर, लोग कहते हैं दुनिया में कि भाग्य की रेखाएं हमारे हाथों में होती हैं, लेकिन सिकंदर का सुनते थे कि उसके हाथ में कोई रेखाएं नहीं थी और उन्होंने कहा कि ये मैं खुद अपना भाग्य बनाऊंगा।
0: बिल्कुल सही बात,
1: और सच में ही उन्होंने अपने भाग्य को बनाया भी कि लोग आज उनको याद कर रहे हैं, चाहे किसी भी ध्येय से करे, किस विधि से, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया। तो कर्म ही प्रधान है, इसीलिए आप कभी भी देखें भाग्य कहाँ से दिखता है, या तो हमारे हाथों से रेखाएं या हमारे मस्तक से, ज्योतिष होते हैं या जो भी जान, तो क्यों दो जगह से या फिर पैरों से, है ना, पैरों में भी कहते हैं भाग्य की रेखाएं, जैसे कदमों में पदम है, तो ये तीन जगह से क्यों कहा गया? मेरी सोच जैसी होगी वैसा मेरा भाग्य बनेगा, मेरे हाथों से जैसे कर्म होंगे वैसा मेरा भाग्य बनेगा, मेरे पैर मुझे जहाँ ले जाएंगे वैसा मेरा भाग्य बनेगा।
0: क्या बात है,
1: माना मेरे पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ भाग्य की बात कही जा रही है वो सब जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी दिशा में चलेंगे, वही मेरा भाग्य का निर्माण करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
5: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: बार वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, क्या ये सही है कि लाइफ में सब चीज आने का सही टाइम होता है या ये भी डेस्टिनी का कोई प्लान है?
1: ये आंसर जो है वो पूरी तरह से ना हाँ है ना ना है। जो हम देखें कि हर एक चीज की टाइमिंग होती है। अगर आपने बच्चे का एडमिशन किया है
0: जी,
1: और हम कहें अगर इसकी तेज किस्मत है ये अगले साल ही दसवीं कर लेगा,
0: सही बात,
1: जबकि हमने नर्सरी में डाला है, तो ये चीज तो सत्य हो ही नहीं सकती। हाँ, किस्मत तेज है तो अपनी क्लास में वो फर्स्ट आएगा, लेकिन अगले साल ही वो टेंथ क्लियर कर ले, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उसका अपना एक टाइम है, तो उस टाइम के लिए हमें मेहनत करनी है।

0: टाइम पे आएगा, टाइम पे मिलेगा. टाइम पे मिलना ये इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमें पेशेंस बहुत होना चाहिए. मैं आज ही कहूँ कि मुझे टेंथ करनी है, मैं नर्सरी में हूँ, तो पेशेंस
1: बिल्कुल.
0: और टेंथ के लेवल तक की जो एनर्जी या जो भी मैं इंटेलिजेंस हासिल करने वाली हूँ, तो क्या आज मैं उसको अपने अंदर कंटेन कर सकूंगी, रख सकूंगी?
1: बिल्कुल.
0: मेरा वो लेवल अभी है नहीं. तो इसीलिए अगर मैं आज टेंथ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी. पर मैं 10 साल में अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि मैं उस ओहदे को, उस पोजीशन को अपने ऊपर ले लूंगी और उस चीज को मैं संभाल पाऊंगी.
1: बिल्कुल.
0: मैंने कोई भी चीज ली, फॉर एग्जांपल मैंने गेहूं खरीदा, लेकिन मैं उसमें गोलियां ही नहीं डाल रही हूँ, उसको साफ करके रख ही नहीं पा रही हूँ, उसे धूप ही नहीं लगा रही हूँ, उसको कंटेनर में ही नहीं डाल रही हूँ, और फिर कह रही हूँ किस्मत में होगा तो रोटी खा लेंगे.
1: बिल्कुल.
0: तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट राइट. तो हमें उसको यही देखना, अगर मैं उसकी कैपेसिटी में अपने आप को रखती हूँ कि मैं गेहूं को रख सकती हूँ, तो मैं खरीद के ले आऊं. और अगर मैं गेहूं को संभाल नहीं सकती हूँ, तो मैं आटा खरीद के ले आऊं. और अगर मैं आटा भी बनाकर नहीं खा सकती हूँ, तो मैं होटल में जाके रोटी खा सकती हूँ. लेकिन यहाँ पर मैं टाइम के लिए वेट कर लूँ कि होटल से रोटी आ जाए, तो मैं अगर चाहती हूँ कि पकी पकाई रोटी मेरे पास आ जाए, तो भी मुझे उंगलियां दबाकर मोबाइल में नंबर प्रेस करने होंगे रेस्टोरेंट्स के, या फिर कोई भी ऐसी कमर्शियल लेवल्स के जहां से रोटी आ जाए. मेहनत तो हर हाल में करनी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन 10 मिनट मांगती है, तो टाइम तो उसमें भी लग रहा है
1: जी.
0: तो टाइम हर एक चीज का आता है, मेरा भी टाइम आएगा, हर एक का टाइम आएगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे बैठना नहीं है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है.
1: जी जी, बिल्कुल सही बात है. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट.

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बी के ज्योति जी और बी के प्रिया जी। ज्योति जी, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगी, तो क्या हमारी सोच और माइंडसेट एक्चुअली में किस्मत को चेंज कर सकता है या नहीं?
1: बिल्कुल कर सकता है, और सोच से ही हमारे जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल,
1: जो विचार है वो हमारे जीवन के बीज है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं, जिन्होंने अपने मन के अंदर ठान लिया है कि मुझे ये बनना है, तो वो उस तरफ अगर कार्य करने

0: जाते हैं तो उनको वो चीजें मिल भी जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं कि एक स्टूडेंट जो है वो विदेश में पढ़ने गए और जब वो विदेश में पढ़ रहा था तो उसने एक स्केच तैयार किया, रफली स्केच, कोई बिल्डिंग देखी थी और उससे कहा कि मेरी ऐसा, मैं जब बन जाऊंगा कुछ तो मेरा ऐसा मकान होगा और ऐसे बाहर जो है वो रिवर बह रही होगी, नदी के किनारे होगा। तो इस तरीके का उसने एक बहुत सुंदर उसकी एक इमेज जो है वो अपने हाथों से ड्रॉ करके और उसने अपनी पिक्चर तैयार कर दी। कुछ समय के बाद फिर उसने अपनी मेहनत की, उस समय वो पढ़ने गया था, उसके पास कुछ भी था नहीं, सिर्फ अपनी स्टडी लाइफ थी। फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते जॉब हो गई, धीरे धीरे शादी भी हो गई, बच्चे हुए। तो एक दिन वो अपने घर के अंदर बैठा था और उनके बच्चे जो है वो एक बॉक्स निकाल के लेके आए जो कि स्टोर रूम में रखा था। और जब उन्होंने कहा इसमें क्या है आपकी, तो कहा कि इसके अंदर मेरे पुराने जब पढ़ता था कॉलेज टाइम की कुछ ऐसी चीजें हैं। तो जब उन्होंने देखा उस बॉक्स को खोल के तो उसमें वो वाली ड्राइंग भी थी जो ड्राइंग उसने बनाई थी अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो बच्चों ने जैसे उस ड्राइंग को देखा कहा पापा ये तो घर बिल्कुल अपने घर जैसा है।
1: बिल्कुल
0: माना जो चीज उसने स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे सोची थी सेम आज उसी मकान में उसी तरीके से वो आज बैठा था। तो उसकी सोच ने उस चीज को इतना एम्पावर किया कि आज वो अपनी डेस्टिनेशन पर है।
1: Exactly.
0: तो जितने भी हम लोगों को सुनते हैं जो महान हैं जिन्होंने अपनी सफलताएं हासिल की हैं, उन्होंने पहले वो इमेज बनाई है, उस इमेज के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया तो अपनी डेस्टिनेशन भी डिसाइड की है। तो हम भी जैसा हम सोचेंगे वैसा हम डेफिनेट बनेंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। आप दोनों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आज के यंगस्टर्स को अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या माइंडसेट रखना चाहिए?
1: आज का यंगस्टर जो है, जो मैं उसको देख पाती हूँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारे तो स्कूल में भी इतने ऑप्शंस नहीं थे जब हम कोर्स के लिए पढ़ते थे, लेकिन आज बहुत ऑप्शंस हैं। किसी एक सब्जेक्ट में ही दुनिया खुली हुई है, लेकिन उतना ही उसके पास वो कन्फ्यूजन्स भी है, वो डाउट में रहता है। तो अगर मैं इसे 3 C's के फॉर्म में देखूं कि पहला सी की क्लैरिटी हो उसे
0: जी,
1: कि उसको क्या चाहिए, उसे क्या करना है, क्या बनना है, कैसा वो देखता है आगे अपने आप को, वो चीज को बहुत क्लियरली वो बनाए। जैसा कि अभी ज्योति जी का एग्जांपल सुना था कि उसने ड्राइंग बनाई और उसको अचीव किया, तो उसी प्रकार से मुझे

0: एग्जाम्पल, मैंने फाइनल एग्जाम्स देने हैं, फाइनल एग्जाम है और मैं आज ही पढ़ूं और कल ही मेरा एग्जाम है, तो नहीं होगा
1: जी।
0: उसके लिए मुझे एक ही चैप्टर को कितनी बार ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि मुझे फाइनल एग्जाम देना है। तो कंसिस्टेंसी, यानी मुझे लगातार निरंतर उस चीज के ऊपर लगना होगा, तब जाके वो चीज जो है वो मेरे अंदर एज माय नेचर ग्रोथ करती है।
1: बिल्कुल,
0: एक है कि मुझे आता है, एक है कि मैं उसके उसमें स्किल्ड हूं, वो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, तो ये चीज लाने में तो टाइम लगती है
1: जी।
0: ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन से बचें क्योंकि दुनिया भरा पड़ा है, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हम चाहे तो पग पग पे अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को डीमोटिवेट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन डोंट कंपेयर, अपने आप को कंपेयर मत करें। परमात्मा ने हर एक को यूनिक बनाया है और हमारा ये मानना है हर एक के लिए उसने फिक्स रखा है उसे क्या देना है
1: जी।
0: अगर आप अचीव नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा पे भरोसा रखें, और अगर परमात्मा पे भरोसा है तो मेहनत नहीं छोड़ें
1: जी।
0: ये इंटरलिंक्ड है। कई लोग मेहनत किस्मत बोलकर भगवान के ऊपर छोड़ के हार जाते हैं, लेकिन यहाँ हारने के लिए भगवान पे नहीं छोड़ना है, यहाँ लगे रहने के लिए भगवान पे छोड़ना है कि जो उसकी रजा में हम राजी हैं, लेकिन हमारे को मेहनत तो करनी ही है। तो इस बेस पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे को काफी चीजों की क्लैरिटी रहती है और हम बहुत आगे जो है अपने आप को ला सकते हैं, अपना गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: अगर आज का यंगस्टर है और अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको कुछ टाइम अपने आप को जानने के लिए जरूर देना चाहिए
1: जी,
2: कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर। आज कुछ चाहिए तो दूसरे दिन कुछ और चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने माइंड को सेट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में मेरी डेस्टिनेशन मुझे क्या बनानी है। तो पहले कुछ पल के लिए सोच करके अपने आप का गोल डिसाइड करें।
1: बिल्कुल,
2: और गोल डिसाइड करने में फिर आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप अपने अंदर की उस काबिलियत को जाने, जब आप उस काबिलियत को जान जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने उस गोल को, अपनी उस डेस्टिनी को जरूर अचीव करेंगे। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छे ये कोट कहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हम बन रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो हमें अपनी सोच को जैसा हम पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे, हम जितनी ऊंची रखेंगे उतनी ऊंचाइयों तक हम जाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। शायद डेस्टिनी हमें सिचुएशंस देती है, लेकिन उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ये हमारे हाथ में होता है। जब एफर्ट और बिलीफ साथ आते हैं तब लाइफ अपनी डायरेक्शन खुद दिखाने लगती है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।
3: Carnival, the last ride, King.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक शराब भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुरानी हवेली के खजाने का राज जानता है।
4: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
5: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा वरना हंसता रह जाएगा।

0: एक निशान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन एक बारिश भरी रात में उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी। राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।
1: फिर

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष की कहानी में मैं हर बार लेकर के आती हूँ कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसे किस्से जो आपके गली मोहल्ले के हैं, आपके आस पास के हैं, पर अभी आप तक नहीं पहुँचे हैं। तो उसका जिम्मा उठा लिया है मोनिका ने और लेकर के आ गई है आज बहुत इंस्पायरिंग कहानी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके लिए एजुकेशन ही सब कुछ है। उसे लगता था कि दुनिया का सबसे कीमती गहना है एजुकेशन, पर जब वो छोटा था, एक छोटा बच्चा, तब किसी वजह से उसे वो एजुकेशन नहीं मिली, वो उससे वंचित रह गया। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट उसे परेशान करता रहा और उसके लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा बना जीवन में आगे बढ़ने का। उसने ठान लिया कि जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बाकी और बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रहें। और क्या किया उन्होंने, किस तरह से किया और क्यों बन गए वो आज लाखों बच्चों के लिए मिसाल, इन सारी चीजों पे हम विस्तार से बातें करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी।
1: यो बस।

0: पड़ोसन हूँ इसलिए जासूस हूँ।
1: सुनो पम्मी बहन जी।
2: बोलो सिम्मी बहन जी।
1: तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए। हाय, वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लों का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कहते हैं जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, लेकिन कुछ लोगों को उस मौके तक पहुंचने के लिए संघर्षों की लंबी लाइन तय करनी पड़ती है। वेलकम बैक, मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी। और एक ऐसी ही कहानी आज हमारे साथ जुड़ चुकी है। कहानी है कानपुर के उद्देश्य सचान की। कानपुर से करीब 24 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जन्मे उद्देश्य का बचपन बिल्कुल साधारण था। पिता सुरेंद्र सचान दर्जी का काम करते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उद्देश्य के सपने हमेशा बड़े थे और उद्देश्य को पढ़ाई से बहुत प्यार था, क्योंकि उनके लिए शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी बल्कि एक बेहतर भविष्य का रास्ता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब घर की आर्थिक परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और इनके पापा यानी इनके पिता सुरेंद्र सचान इनके स्कूल की फीस नहीं भर पाए और इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। एक ऐसा बच्चा जिसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, पढ़ाई किताबें यही सारी उसकी दुनिया हुआ करती थी, अब उसकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो घर में आसपास में अपनी दुनिया को ढूंढने लगा था, पर कहीं ना कहीं वो उस पुरानी दुनिया को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। पर छोटे से बच्चे ने हार नहीं मानी, कुछ टाइम का ब्रेक लिया और पढ़ाई जारी रखी और आगे बढ़ता रहा। 12th के एग्जाम पास करने के बाद उद्देश्य ने कानपुर यूनिवर्सिटी से BPED की पढ़ाई पूरी की। परिवार की जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह से उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ता था। कई कोशिशों के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो उसने मजदूरी भी की। एक आइसक्रीम फैक्ट्री में उद्देश्य ने एज अ वर्कर काम स्टार्ट किया। पर उद्देश्य के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल दौड़ रहा था, क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की है? क्या मैंने इसी दिन के लिए अपने सपनों को बुना है? और उसने उसी वक्त उस फैक्ट्री का काम छोड़ा और निकल पड़ा एक नई जर्नी पर। तो अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है। कहानी में हम आगे बढ़ेंगे, उद्देश्य की कहानी हमें एक उद्देश्य तक लेकर के जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ रेडियो महारानी पर, एंजॉय करिए इन प्यारे प्यारे गानों को। आती हूँ मैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक। इसी प्यार से गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानियों में ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है उद्देश्य सचान की। कई लोग अपनी परेशानियों को अपनी किस्मत मान लेते हैं, तो कुछ लोग अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बना लेते हैं, और उन्हीं में से एक है उद्देश्य सचान। और हमने अभी तक कहानी में जाना कि उद्देश्य ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी ना मिलने की वजह से आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। पर क्या यही उनका करियर था? क्या यही उनका भविष्य था? यही मन में उनके दौड़ रहा था। उन्होंने आइसक्रीम की फैक्ट्री से काम छोड़ा और ज्वाइन कर लिया एक ऐसा काम जो उनके दिल को, जो उनकी दुनिया को पूरा करता था। उन्होंने मन में ये सोचा कि जिस दर्द को उन्होंने खुद महसूस किया है, वो किसी और बच्चे की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और फिर शुरू हुई एक छोटी सी कोशिश। ना कोई बड़ी बिल्डिंग थी, ना ही फैसिलिटीज से भरा हुआ कोई स्कूल, बस एक टेंट की छाल थी और आंखों में बड़ा सा सपना। उद्देश्य ने अपने पापा मम्मी से डिस्कस करने के बाद अपने ही गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन छोटी सोच हमेशा बड़े मुकाम तक ले जाती है, ये किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। उद्देश्य कहीं ना कहीं जानते थे कि एक बच्चे को पढ़ाना सिर्फ उसे अक्षर ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना होता है, उसे सपने दिखाना होता है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और ये छोटी सी क्लास एक ट्यूशन क्लास में बदल गई। पर वो कहते हैं ना कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हो तो कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आती हैं। जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उद्देश्य ने एक ट्यूशन क्लास स्टार्ट किया, तब टाइम आया कोरोना का। और उस टाइम पर रूम के ओनर ने रेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उस वजह से ये रेंट दे नहीं पाए। ये फिर से उसी सिचुएशन में आ गए। उन्होंने पेड़ के नीचे दोबारा से पढ़ाना शुरू किया, पर उस वक्त सोशल मीडिया इनका सबसे बड़ा हथियार बना। तो कैसे कहानी आगे बढ़ी और क्या हार मानकर बैठ गया उद्देश्य या उद्देश्य से भटक गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, सुनते रहिए संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: डॉन की खोज तो 7 देशों की पुलिस कर रही है, पर पानी की खोज सारी दुनिया।
1: डॉन को पकड़ना शायद आसान भी हो, पर पानी के बिना जीना मुश्किल। तो आज से ही पानी यूज करो उतना, जरूरत हो जितना।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
0: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

कहते हैं आपने जिंदगी में अगर कुछ ठान लिया है कुछ करने का हौसले के साथ में, हिम्मत के साथ में और शिद्दत के साथ में, तो फिर वो चीज होकर ही रहती है। और अगर यकीन नहीं है तो कभी आजमा कर देखिएगा। वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और संघर्ष की कहानी में आज कहानी चल रही है उद्देश्य सचान की। और इस कहानी में हम आगे बढ़ चुके थे, हमने जाना कि कैसे उद्देश्य सचान ने जब अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की तो कोरोना का एक बहुत बड़ा थप्पड़ उनकी क्लास पे पड़ा और वो क्लास बंद हो गई क्योंकि ओनर ने रेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और उस वक्त कुछ काम ना होने की वजह से ये रेंट नहीं दे पाए और उनकी क्लास फिर से एक पेड़ के नीचे लगना स्टार्ट हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसिडेंट होता है वो किसी ना किसी वजह से होता है और इसके पीछे भी कहीं कोई ना कोई वजह जरूर थी। और वो वजह ये थी कि ये इंसिडेंट उद्देश्य सचान को लेकर के आ गया सोशल मीडिया पर, जहां पर लोगों ने इनकी मेहनत को देखा और सराहा। कहीं ना कहीं से इनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलने लगी इनके सोशल मीडिया पेज से। एक वीडियो इनकी इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोगों ने इनको और ज्यादा प्रेज करना और प्यार देना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे इस हौसले की कहानी आगे बढ़ी और उद्देश्य सचान ने अपने ही गांव में स्टार्ट किया गुरुकुलम नाम का एक स्कूल। गुरुकुलम मतलब कि जहां पर गुरुकुल की शिक्षा भी दी जाएगी और साथ ही साथ आपको बिजनेस और आपकी हॉबीज की पढ़ाई भी कराई जाएगी। जिस तरह की हॉबी जो बच्चा रखता है उसके आगे उसे प्रोसेस किया जाएगा, क्योंकि उद्देश्य ने बहुत ही बारीकी से भापा था कि गांव के बच्चे जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती, जो बहुत ही बचपन में काम करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत गलत आदतों में फंस जाते हैं। और गांव के बच्चों में बहुत सारा टैलेंट होता है लेकिन शिक्षा ना मिलने की वजह से वो हुनर बाहर निकल के नहीं आता। तो उन्होंने शिक्षा देने का भी, एक संस्कार देने का भी निर्णय लिया और साथ ही साथ ये भी सोचा कि इनको इनकी हॉबीज की भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे गुरुकुलम से जुड़ने लगे, जहां पर उन्होंने संस्कार के साथ साथ यहां पर अपनी हॉबीज पर भी काम करना शुरू कर दिया। और यहां पर सिर्फ बच्चों को फिजिकल ट्रेन नहीं किया जाता था बल्कि मेंटली प्रिपेयर भी किया जाता था, हर एक बच्चे की करियर काउंसलिंग कराना। मतलब उद्देश्य ने सिर्फ बच्चों को अपने स्कूल में नहीं लिया था बल्कि उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। उनके लिए बुक्स मंगवाना, कपड़े मंगवाना और साथ ही साथ जिन जरूरतों को वो पूरा कर सकते थे उन्होंने हर तरह से वो पूरी कोशिश की। और गुरुकुलम आज बहुत सारे बच्चों को एक नई जिंदगी दे रहा है। और आज उद्देश्य सचान को 150 से भी ज्यादा बच्चों का डैडी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सिर्फ जिंदगी जीना नहीं सिखाया बल्कि सपने देखना भी सिखाया है। तो उद्देश्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब भी आपके साथ कुछ होता है वो आपके भविष्य में एक नई प्रेरणा के लिए होता है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन का डट के सामना करते हो और अपने सपनों से नहीं भटकते तो कहीं ना कहीं एक दिन वो सपने जरूर पूरे होते हैं। उद्देश्य सचान ने भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन फेस की थी जिसमें उसने देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के बाद अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वो शिक्षा मैं दूं। और कहीं ना कहीं ऐसी उनकी कंडीशन थी नहीं कि वो शिक्षा दे पाए या कोई बिजनेस कर पाए, पर अगर उन्होंने ठाना तो वो करके दिखाया। तो अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और उसे पूरा करने का ठान लीजिए, क्योंकि अगर आपने सपना देखा है तो वो पूरा जरूर होगा। तो अभी मेरा वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, ऐसे कुछ रियल किस्से हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9654896896। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और हमें शेयर करिए अपनी कहानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वेलकम टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे अक्सर लोग सिर्फ ग्रूमिंग या अपीयरेंस से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में ये ओवरऑल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। सो आज रेडियो महारानी की पोषण की पाठशाला में हम बात कर रहे हैं मेंस स्किन हेल्थ की। रोज की भाग दौड़, धूप, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, इवन स्वेटिंग लाइफस्टाइल और कभी कभी बेसिक केयर को इग्नोर कर देना, ये सब हमारी स्किन पर असर डालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हेल्दी स्किन सिर्फ देखने के लिए जरूरी है? ये हमारी बॉडी और वेलबींग का भी एक सिग्नल होती है। सो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मेन के स्किन को कैसे समझे, कौन सी कॉमन मिस्टेक अवॉइड करें, साथ ही स्किन केयर कितना सिंपल हो सकता है और कौन से साइन है जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस जरूरी टॉपिक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में जुड़ी है डॉक्टर राधिका रहेजा, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है फ्रॉम एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो मैन स्किन हेल्थ से जुड़े प्रैक्टिकल और यूजफुल इंसाइट्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करेंगी। तो बने रहिए रेडियो महारानी के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राधिका। डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं मैन स्किन हेल्थ की। तो डॉक्टर, अगर मैं स्किन केयर की बात करूं तो स्किन केयर को सिर्फ अपीयरेंस से जोड़ते हैं, लेकिन अगर बात की जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी स्किन ओवरऑल हेल्थ के साथ कैसे जुड़ी हुई है?
1: आई एम डॉक्टर राधिका रहेजा फ्रॉम एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद। सो स्किन इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओवरऑल सिस्टमिक हेल्थ। तो हमारे पास बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कुछ स्किन के साइंस लेके, और हम उनको फर्स्ट टाइम वो साइंस देख के ही डायग्नोस करते हैं कि उनको शुगर है या उनको PCOS है फॉर फीमेल्स, या उनको थायराइड है, या किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर तुमको डार्क नेक का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में, एंड आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, तो हम आपको बोलते हैं शुगर टेस्ट कराने के लिए। तो बहुत सारे पेशेंट्स में उसी टाइम पे पता चलता है कि आपको शुगर है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जेनिटल के फंगल इन्फेक्शन लेके आते हैं, स्पेशली मेल्स, एंड उसी टाइम पे वो एक डायग्नोस्टिक साइन होता है। एट दैट टाइम दे कम टू नो दैट उनको शुगर है। सो अगर किसी फीमेल को PCOS है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उनके पीरियड की ही एबनॉर्मैलिटीज हो। बहुत बार वो ऑयली स्कैल्प एंड ऑयली स्किन के मैनिफेस्टेशन लेके आते हैं कि उनको बहुत एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहा है, बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी उनका एक्ने ठीक नहीं हुआ। देन वी गेट देम इन्वेस्टिगेटेड एंड तब हमें पता चलता है कि आपको PCOS है। बहुत आज एक कॉमन कंसर्न है आजकल की हेयर फॉल ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को हो रहा है। आप जब उनके इन्वेस्टिगेशंस कराओगे तो पता चलता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, कुछ कंडीशंस में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कुछ कंडीशंस में थायराइड भी निकल के आता है। एक कंडीशन होती है जिसमें आपको स्किन पे रैश हो जाता है रेड कलर का, जिसको हम हिंदी में चकत्ते बोलते हैं। उसमें भी जब आप इन्वेस्टिगेट कराओ तो पता चलता है कि पीछे से उनको कुछ गट का इशू था जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही थी। तो स्किन को हम बस ओवरऑल अपीयरेंस से रिलेट नहीं करते हैं, एक्चुअली इट इज अ मार्कर ऑफ योर सिस्टमिक हेल्थ। तो आप अगर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो डेफिनेटली इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटरी।
0: बहुत इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर आज आपने बताई है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी स्किन सिर्फ देखने की बात नहीं बल्कि बॉडी और लाइफस्टाइल का भी एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। और आज हम रेडियो महारानी के पोषण की पाठशाला में बात कर रहे हैं मेंस स्किन हेल्थ की, और इस टॉपिक से जुड़ी हम बहुत सारी बातें डॉक्टर राधिका से करेंगे। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।
2: हो गया

0: खाना तो अच्छा होगा ना।
1: एक खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार।
3: क्या आपको पता है कि आपके और दुर्घटना के बीच में बस थोड़ी सी लापरवाही का फर्क होता है, तो सावधानी से चलें और सुरक्षित पहुंचे।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस स्किन हेल्थ के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राधिका। सर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंसेस की, तो ये बताइए मेन के स्किन और वुमेन के स्किन में साइंटिफिकली क्या डिफरेंस होता है? और साथ ही अगर बात करूँ स्किन केयर की, सो स्किन केयर किस तरह से अलग हो सकता है?
1: यस अंजलि, सो ये मेल्स के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि मेल्स की एजिंग बहुत ही स्लोली होती है और बहुत ही ब्यूटीफुली होती है। आई माइट टेक सम नेम्स, बट तुम देखोगे बहुत सारे एक्टर्स को जो और ज्यादा एज हो रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्मार्टर। सो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि उनका हाइड्रेशन कॉन्टेंट वगैरह बिल्कुल ऑन पॉइंट रहता है। फीमेल्स का हाइलुरोनिक एसिड जो कॉन्टेंट है वो आफ्टर 30 बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लगता है, बट मेल्स का वो बहुत एक स्टेडी डिक्लाइन है एंड बहुत स्लो डिक्लाइन है। तो उनके फेस पे डलनेस या एजिंग इतना ज्यादा पता नहीं चलती है, बट उनके पोर साइज बिगर होते हैं। तो अगर किसी को एक्ने हुआ है तो एक तो इनकी एक्ने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है पोर साइज बड़ा होने की वजह से, बिकॉज सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और अगर उनको एक्ने हो गया तो स्कार्स रहने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा हैं। बहुत मेल्स को आपने देखा होगा कि एक्ने के गड्ढे होते हैं या बड़े बड़े पोर्स होते हैं, तो इसलिए उनको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फीमेल्स।
0: जी डॉक्टर, तो यहाँ आज एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग हमें सीखने को मिली है फ्रॉम डॉक्टर राधिका। एंड डॉक्टर ने ये बताया कि स्किन की जरूरत अलग हो सकती है और इसलिए केयर भी समझ कर करनी चाहिए। तो आज आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल टिप हमें डॉक्टर राधिका ने दी है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं स्किन केयर को लेकर। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम मेंस स्किन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। सो डॉक्टर, सबसे पहले तो ये बताइए, कौन से ऐसे तीन सबसे कॉमन स्किन मिस्टेक्स हैं जो हर मैन रोज अपनी लाइफ में कर रहे हैं लेकिन कभी भी उन्हें नोटिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है?
1: ये मैंने खुद अपने हस्बैंड को देखा है ये सारी चीजें करते हुए। नंबर वन इज कि वो बियर्ड की केयर नहीं करते हैं। बियर्ड को आपको आपके स्कैल्प की तरह ही ट्रीट करना होता है। तो जो शैम्पू आप स्कैल्प के लिए यूज कर रहे हो, जितनी फ्रीक्वेंसी में आप स्कैल्प को वॉश करते हो उतनी फ्रीक्वेंसी में आपको बियर्ड को भी वॉश करना है। एंड बियर्ड के लिए भी एक शैम्पू चाहिए, बिकॉज बियर्ड भी एक थिक हेयरी एरिया है। नंबर टू, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि आज तो बॉडी वॉश था नहीं, आपने क्या लगाया? तो वो बोलते हैं मैं तो शैम्पू से ही पूरा नहा के आ गया। तो वो लोग कोई भी एक चीज उनको दे दो, उसी को फेस पे भी यूज कर लेंगे, उसी को बॉडी पे, उसी को सिर पे, बट ऐसा होता नहीं है। वो बनाया इसलिए गया है बिकॉज वो अलग अलग एरियाज को टारगेट करता है। नंबर थर्ड इज कि वो रोज बाल गीले करते हैं, चाहे वो उसको शैम्पू करें या नहीं करें, बट उनको पानी से गीले जरूर करना है। सो उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और सही बताऊं तो ये एग्जैक्टली उल्टा ही होता है, बिकॉज आपके बाल में फिर आप ब्लो ड्राई भी नहीं करते हो, उसको एयर ड्राई करने देते हो, तो उससे आपके बाल और फ्रिजी हो जाते हैं एंड दे आर मोर प्रोन टू सन डैमेज एंड उस मॉइस्चर की जैसे फंगल इन्फेक्शन, जो कि डैंड्रफ कॉमनली बोला जाता है, वो भी और ज्यादा ओवरग्रो हो सकता है। सो जो भी मेल्स जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो प्लीज पहले तो डेली अपने बाल वेट करना बंद कर दें।
0: सो डॉक्टर, आपकी बातें सुनने के बाद वाकई ऐसा लगता है कि हम में से काफी लिसनर्स हैं जो कि इस हैबिट से रिलेट कर सकते हैं, और शायद आज आपकी बातें सुनने के बाद हम सब अपनी ये छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करें। और इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस स्किन हेल्थ के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राधिका। सो डॉक्टर, अगर मैं सनस्क्रीन की बात करूं तो सबसे पहले ये बताइए कि सनस्क्रीन को ना काफी लोग ये बोलकर अवॉइड करते हैं कि ये सिर्फ विमेंस के लिए है, या फिर अगर आप बीच पर कहीं जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं तभी सनस्क्रीन काम आती है, तो इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही ये भी बताइए, क्या मेन को भी डेली सनस्क्रीन लगाना चाहिए? कितनी ज्यादा जरूरी होती है सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए?
1: हाँ जी बिल्कुल, मोस्ट सर्टेनली लगा

पे होगा तो ऑब्वियसली आपको उसको पूरा रिमूव करवाना ही पड़ेगा। एंड उसको केवल अगर आप एक सनस्क्रीन लगाने से प्रिवेंट कर सकते हो, सो आई मीन व्हाई नॉट। आपको सनस्क्रीन एक एडिक्वेट अमाउंट में लगानी है, विच इज 3 finger length फॉर योर फेस एंड नेक, एंड वो आपको डेली लगानी है। अगर आप धूप में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप घर के अंदर हो, घर के अंदर भी लाइट नहीं है तभी भी लगानी है। एंड बाहर जाने से एटलीस्ट 30 minutes पहले आपको लगा के जानी है, बिकॉज उतना टाइम लगता है सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने में। एंड आइडियली आपको रीअप्लाई भी करनी होती है एवरी 4 hours, बट फॉर दोज मेल्स जो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, एटलीस्ट आप फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। एंड सनस्क्रीन में आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स एंड कुछ चीजें भी नोटिस करनी होती है, जैसे कि SPF विच इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो 30 से ज्यादा होना चाहिए या 30 होना चाहिए, बट 30 से कम नहीं होना चाहिए। एंड एक UVA रेटिंग भी हमको देखनी होती है, बिकॉज जो भी साइड इफेक्ट्स आपको फेस पे होंगे, टैनिंग जो कि कॉमन कंसर्न्स हैं, या सनबर्न्स, ये सब एक्चुअली UVA से होते हैं। तो UVA को देखने के लिए आपको एक PA रेटिंग करके होता है सनस्क्रीन के ऊपर, तो वो फॉलो करना होता है, Capital P Capital A, वो 3+ से ज्यादा होना चाहिए। सो ये सब सनस्क्रीन चीजें आपको देख के, एंड देन यू शुड बाय अ सनस्क्रीन, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल डॉक्टर, और आज डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर किया है सनस्क्रीन के बारे में, और साथ ही ये भी बताया है कि सनस्क्रीन किसी स्पेशल इवेंट के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी डेली प्रोटेक्शन का हिस्सा है। आज अगर आप हमारा ये एपिसोड सुन रहे हैं और आज से पहले कभी आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते थे, तो प्लीज अपनी डेली लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बनाइए सनस्क्रीन को, और घर से बाहर जाते वक्त जरूर सनस्क्रीन अप्लाई कीजिएगा, और अगर आप घर में भी रहते हैं तब भी जरूर सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस स्किन हेल्थ के बारे में। सो डॉक्टर, अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। जिम जाने वाले या फिर आउटडोर काम करने वाले जितने भी मेल्स हैं, वो कभी भी अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। सो स्किन केयर में क्या एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए उन्हें, सो दैट कि उनके स्किन पर इस पॉल्यूशन का, स्वेटिंग का कोई इफेक्ट ही ना हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसिडरिंग कि आजकल लोग बहुत ज्यादा जिम कंसर्न हो रहे हैं एंड अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत दे आर वेरी मच वरिड। उनको अपनी स्किन हेल्थ के लिए भी उतना ही वरिड होना चाहिए। स्पेशली कुछ कुछ कंसर्न्स हैं जो जिम जाने वाले लोगों में, बिकॉज दे स्वेट अलॉट, उनमें ही देखे जाते हैं। सो एक चीज होती है बैक एक्ने। ट्रस्ट मी, एवरी डे वी सी अ लॉट ऑफ मेल पेशेंट्स विद बैक एक्ने, जिसका बहुत ज्यादा एसोसिएशन है विद स्वेटिंग ड्यू टू जिमिंग और एनी फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू फ्रिक्शन, बिकॉज आप बहुत बार टाइट टाइट कपड़े भी पहनते हो जिम जाने के लिए। ऑल्सो इट्स रिलेटेड टू वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, विच इज अगेन अ वेरी कॉमन थिंग इन दीज डेज, क्योंकि जिम जाने के लिए आपको अपना बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटीन इनटेक कवर करना होता है, तो वे प्रोटीन बेसिकली एवरीबॉडी इज टेकिंग। इट्स गुड, बट उसका एक सब्सटीट्यूट है कि अगर आपको बैक एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हो टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन एज वेल। ऑल्सो एक चीज होती है जिसको हम पिट्रियासिस वर्सिकलर बोलते हैं, विच इज अगेन अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। उसमें आपको स्किन पे स्किन कलर के ही पैचेस हो जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन अगेन, ब्राउन कलर के पैचेस या लाइट स्किन कलर के पैचेस, जिसमें कोई पेन कोई इचिंग नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट इट इज विजिबल। बहुत लोगों को वो नेक और फेस पे भी हो जाता है, देन दे आर वरिड कि बाहर से दिख रहा है। ये सब चीजें आप प्रिवेंट कर सकते हो दो तीन प्रिकॉशंस लेके, कि जब भी आप जिम जा रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आ रहे हो, तो सबसे पहली बात तो आपको आके एक शावर जरूर लेना है, चाहे आप नॉर्मल प्लेन वाटर से ही शावर ले लो। अगर आपको बैक एक्ने का प्रॉब्लम है तो आपको टाइट्स नहीं पहनने हैं, वे प्रोटीन की जगह आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हो। एंड अगर ये फंगल इन्फेक्शन जैसा कुछ हो रहा है तो आप कोई एंटी फंगल सोप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक कीटोकोनाजोल सोप वगैरह, जो कि एक प्रिकॉशनरी चीज के लिए मैं बोल रही हूँ। ऑल्सो वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से एक्ने ब्रेकआउट भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसका पूरा पूरा प्रूवन स्टडीज है कि वे प्रोटीन हैज बीन एसोसिएटेड विद एक्ने, बिकॉज इट इज वेरी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। सो ऐसे पेशेंट्स जिनको एक्ने का कंसर्न है, हम उनका वे प्रोटीन बंद करवा के वी आस्क देम टू स्विच टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एक्ने के साथ साथ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन अगर आप ले रहे हो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, मोर देन 3 ग्राम्स, तो उसका रिलेशन विद हेयर फॉल भी देखा गया है। सो ये सब चीजें आपको यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आप जिम जा रहे हो तो।
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आपने बहुत सही बोला कि जिम जाकर फिजिकल हेल्थ का ध्यान तो रख लेते हैं और बाहर जाकर पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन अपने स्किन का कभी ख्याल नहीं रखते। तो हेल्दी रूटीन के साथ स्किन हाइजीन पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी बॉडी पर, यानी कि अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना, और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी जरूरी है। सो और भी बहुत कुछ है आज हमारे साथ जानने के लिए, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला। सर डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ
1: सर डॉक्टर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं?
2: जिंक, आपको पम्पकिन सीड्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है या एक स्कैल्प पे सोराइसिस नाम की बीमारी होती है, इन सब चीजों में जिंक सप्लीमेंटेशन का बहुत अच्छा रोल है। तो आप जिंक बाहर से ना लेके पम्पकिन सीड्स के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हो, उसके लड्डू बना के या उसको स्प्रिंकल करके। नंबर टू इज आयरन। सो आयरन के लिए आप गाजर, चुकंदर जो इस सीजन में थोड़ा सा कम मिलेगा, पालक या फिर पम्पकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगेन नट्स एंड सीड्स, ये सारे एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आयरन के। आयरन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए। आपको अलग से, मतलब हम लोगों को तो अलग से देख के पता चल जाता है दूर से ही दैट आप आयरन डेफिशिएंट होगी नहीं, बिकॉज आपके स्किन पे एक अलग से पेल टिंज होगा। सो अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेल्स एज वेल। एंड विटामिन डी एंड विटामिन B12, तो आई एम सॉरी अगर आप वेजिटेरियन हो तो B12 का कोई सोर्स नहीं है, उसके लिए फिर आपको B12 बाहर से ही लेना पड़ेगा, बिकॉज इज नो वेजिटेरियन सोर्स। बोलते हैं कि कुछ मशरूम्स में होता है बट इट इज वेरी लेस इन अमाउंट। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हो, आपको कोई ग्रे हेयर का कंसर्न है या हेयर फॉल का कंसर्न है, तो आप विटामिन B12 पहले अपने टेस्ट एंड देन आप स्टार्ट कर सकते हो सप्लीमेंटेशन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। विटामिन डी अगेन इज आल्सो रिलेटेड विद हेयर फॉल, स्किन में जो हाइव्स का प्रॉब्लम होता है वो सब, सोराइसिस में भी विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी देखी गई है। बट विटामिन डी अगेन, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम बहुत धूप खाते हैं तो हमारा विटामिन डी ठीक है, बट एक्चुअली विटामिन डी बनाने के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर सन एक्सपोजर करना होता है 10 से 2 बजे के बीच में। ओनली 15-20 मिनट्स सन एक्सपोजर इज एडिक्वेट, जो आप हफ्ते में 2 बार करो, बट कपड़े आपको सबसे कम पहनने होते हैं उसमें, एंड देन वो विटामिन डी बना पाए। तो इंडिया में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, दैट्स व्हाई एवरी इंडियन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, माइंड मी एवरी इंडियन। ऑल दैट बीइंग सेड, आपको सप्लीमेंट्स अपने आप स्टार्ट नहीं करने हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्स की टॉक्सिसिटी से भी प्रॉब्लम होता है, तो ओनली आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर वो आपके ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा, फिर अगर डेफिशिएंसी आती है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो जिनको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है उनके लिए ओमेगा फैटी एसिड एंड विटामिन ई इज इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपको नट्स एंड सीड्स में बहुत आराम से मिल जाएगा। एंड हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू ड्राई स्किन। एक चीज होती है स्ट्रॉबेरी स्किन या चिकन स्किन हम जिसको बोलते हैं, जिनके आर्म्स और लेग्स पे बम्पी स्किन होती है, उसके लिए विटामिन ए सप्लीमेंटेशन होता है। अगेन आप पम्पकिन या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या स्वीट पोटैटो, जो विटामिन ए रिच सोर्सेज हैं, इस सीजन में तो कम अवेलेबल है, वो कंज्यूम कर सकते हो।
0: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स में देने के लिए। और डॉक्टर ने आज बताया बियर्ड स्टाइल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसके नीचे की स्किन का ख्याल रखना उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि आप अपनी लुक्स का रखते हैं। सो माय डियर लिसनर्स, आज से बियर्ड केयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप बियर्ड केयर अवॉइड कर देते हो जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। सो आज की टिप आपके लिए है, जरूर इसे अप्लाई कीजिएगा और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला। सो डॉक्टर, आज हम बात करें मेंस स्किन हेल्थ की, लेकिन ये बताइए कब किसी स्किन इश्यू को नॉर्मल ना समझकर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और घर के नुस्खों से थोड़ा सा बचना चाहिए।
2: सो अगेन हमारे पास अंजलि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी घर के बहुत सारे नुस्खे और मम्मी के नुस्खे ट्राई करके आते हैं। अगेन आई विल बी ब्रेकिंग दिस मिथ कि आप फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगा लो और बेसन लगा लो या कुछ और लगा लो तो उससे आपके एक्ने नहीं जाने वाले हैं। ऑल्सो बहुत मम्मी को ये लगता है कि प्यूबर्टी में दाने आते हैं बच्चे को, ये अपने आप चले जाएंगे, ये हॉर्मोन्स के दाने हैं। वो बात ठीक है कि हॉर्मोनल चेंजेस होने से दाने होते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करोगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आप फेस वॉशेज मॉइस्चराइजर्स नहीं यूज करोगे तो वो पिम्पल अपने आप से ठीक हो जाए वो बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्सो आपको डाइट में भी कुछ कुछ चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पे जंक फूड का बहुत बड़ा रोल है कि आप अगर पूरा स्किन केयर भी कर लो फिर भी अगर आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपके एक्ने वगैरह नहीं ठीक होने वाले हैं। सो अगेन दिस विल बी टोल्ड टू यू बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको पूरा एग्जामिन करेगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टिंग फ्रॉम योर डाइट टू योर ऑयलिंग टू हॉर्मोन चेंजेस टू योर मूड चेंजेस टू स्लीप लेवल्स टू स्ट्रेस लेवल्स टू वाटर इनटेक, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। सो अगेन ये सब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। दूसरी चीज, हेयर फॉल के लिए भी लोग बहुत सारे नुस्खे ट्राई करके आते हैं, कोई अनियन जूस लगा रहा है तो कोई घर में कोई चीज बना के अपना कोई ऑयल बना के यू लोग यूज कर रहे हो, बट आप बहुत सारा टाइम फ्रेंकली इस चीज में गवा देते हो। अगर आपने 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन वेट कर लिया बट यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड सो मेनी ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तो इससे अच्छा आप सही ट्रीटमेंट ही कर लो। आप कर तो रही हो और चीजें खराब भी हो रही है उससे। सो अगर आपको कुछ भी स्किन का क्वेरी है, फंगल इन्फेक्शन आजकल इतने वर्स हो गए हैं कि हमको उसका ट्रीटमेंट जो कि पहले 3 महीने में हो जाता था वो 1 ईयर तक चलाना पड़ता है ओनली बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड मिसयूज बाय जनरल पीपल एंड बाय केमिस्ट। सो एट एनी स्किन मैनिफेस्टेशन आई वुड आस्क यू टू प्लीज आप अपना दिमाग मत लगाओ एंड एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा दो, आपको इससे बहुत ज्यादा टाइम और मनी सेव होने वाला है।
1: जी डॉक्टर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आज आपने बताई है, क्योंकि अक्सर हम प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसका ट्रीटमेंट करा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमें फेस करने पड़ती है। सो माय डियर लिसनर्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, घर में ही डॉक्टर ना बने। सो डॉक्टर, आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेन स्किन हेल्थ को लेकर?
2: सो अंजलि, मैं एक वन लाइनर बोलना चाहती हूँ, दैट रियल मेन don't just build their muscles, they do take care of their skin as well. Thank you so much Anjali.
1: उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए बहुत यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। आज हमने जाना कि हेल्दी स्किन सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ, लाइफस्टाइल और साथ ही डेली हैबिट से जुड़ी हुई होती है। छोटी छोटी आदतें जैसे स्किन हाइजीन, सन प्रोटेक्शन और टाइमली केयर, ये हमें लाइफ टाइम हेल्प करता है। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर राधिका फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज आपने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, स्किन रिलेटेड प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए और ये तक बताया कि स्किन का ख्याल रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का रखते हैं। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक और बहुत सारे इनसाइट्स के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लॉस और ग्रीफ जिंदगी के वो फेजेस होते हैं जिनके लिए हम कभी सच में प्रिपेयर्ड नहीं होते। कभी किसी अपने को खोने का दर्द, कभी किसी रिलेशनशिप के एंड होने का पेन और कभी लाइफ के किसी डिफिकल्ट फेज का इमोशनल वेट, ये सब हमारे अंदर बहुत गहरा असर छोड़ जाते हैं। ऐसे में हीलिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होता है और ग्रीफ काउंसलिंग किस तरह हेल्प करती है और क्या वक्त के साथ सिर्फ दर्द कम होता है या इंसान सच में हील भी कर पाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन मलिक जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन ग्रीफ काउंसलिंग एंड हीलिंग। मैम, सबसे पहले ग्रीफ को समझने की कोशिश करते हैं।
1: मैम, ग्रीफ या शॉक को आप कैसे डिफाइन करेंगी एंड क्या ग्रीफ सिर्फ किसी अपने को खोने से होता है या ब्रेकअप, डाइवोर्स, करियर लॉस और दूसरों की लाइफ चेंजेस भी ग्रीफ का कारण बन सकती हैं?
2: अगर हम ग्रीफ की बात करें तो ग्रीफ और शॉक, जो एक टर्म आपने यूज करा, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। कोई भी इंसान अगर अपनी कोई भी किसी की लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट लॉस होता है, कोई मीनिंगफुल चीज उसकी लाइफ से निकल जाती है, फिर चाहे इट्स अ डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, अ क्लोज्ड वन, और इफ यू टॉक अबाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस, लाइक फॉर एग्जांपल इफ समबडी लूजेस देयर जॉब, किसी की फैमिली में बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इफ समबडी लूजेस समबडी, किसी का ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप लॉस, तो किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंट लॉस जिससे इंसान को एक वॉइड, एक नेगेटिव सैड फीलिंग्स, एक इमोशनल सेटबैक फील होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीफ एंड इट इज नॉर्मल एंड नेचुरल टू फील ग्रीफ।
1: ओके, और अक्सर लोग कहते हैं कि मूव ऑन कर जाओ, इतना हैवी नहीं है, यू विल डील विद इट। तो क्या ग्रीफ से मूव ऑन किया जा सकता है या हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ता है?
2: सी, मूव ऑन बहुत ही लेमैन टर्म है, हम हर किसी को बोलते हैं।
1: एग्जैक्टली,
2: कुछ भी हो जाए यार तो मूव ऑन कर जाएगा, चिल कर
1: जी,
2: थोड़े दिन की बात है।

0: जाएगा, राइट? ठीक है, टाइम हील्स एवरीथिंग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रीफ टेक्स टाइम, हीलिंग टेक्स टाइम, एंड उस टाइम का कोई टाइम फ्रेम नहीं है. लाइक वी कांट से कि आई विल गेट ओवर समथिंग इन अ मंथ और सो, और मैं ये नहीं बोल सकती कि आप साल लगा देंगे इस पे.
1: जी.
0: तो एक पूरा प्रोसेस है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड एवरीबडी हैव टू गो थ्रू इट.
1: एग्जैक्टली.
0: एंड उसकी शुरुआत तभी हो सकती है उस प्रोसेस की जब हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ओके ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग ओके, आई एम इन पेन, आई एम इन इमोशनल पेन एंड आई वॉन्ट टू फाइट विद इट.
1: एग्जैक्टली. बिल्कुल सही बात है.
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है आज की डिस्कशन से, क्योंकि ग्रीफ को समझना ही हीलिंग की पहला स्टेप होता है. अब लेते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. ब्रेक के बाद बात करेंगे उन इमोशंस की जो ग्रीफ के दौरान सबसे ज्यादा हैवी फील होते हैं, जैसे गिल्ट, रिग्रेट और काश वाले थॉट्स. कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड.

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: वेलकम बैक, मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज हमारे साथ हैं सिमरन मलिक और हम बात कर रहे हैं ग्रीफ काउंसलिंग एंड हीलिंग के बारे में।
1: मैम, ग्रीफ के टाइम पर गिल्ट, रिग्रेट और काश मैंने ऐसा किया होता, तो ये जैसे इमोशंस बहुत कॉमन होते हैं, तो इन इमोशंस को हेल्दी तरीके से कैसे प्रोसेस किया जा सकता
2: है? आपने बात करी है फीलिंग ऑफ गिल्ट की।
1: जी,
2: सो फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट कम्स ऑटोमेटिकली विद ग्रीफ।
1: एग्जैक्टली,
2: बिकॉज जब आपकी लाइफ में कोई लॉस होता है तो सबसे पहले हम अपने आप पे ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों मैंने किया जो ऐसा हुआ, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में। तो इस फीलिंग को फील करना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन को कि एक्चुअली में हमारे साथ ही हुआ है।
1: एग्जैक्टली,
2: तो जब ये फीलिंग आती है ना, तो वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट एंड फील दिस फीलिंग। Nobody wants to feel negative.
1: जी,
2: सबको negative feeling से दूर भागने की आदत है। We humans are designed in such a manner, we only want pleasant feeling.
1: Exactly.
2: We only want pleasure. So, but we need to understand, we have to sit with our negative feelings, regrets and guilt and feel and deal with it.
1: Okay.
2: और उसको deal कैसे करना है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करें।
1: Okay.
2: Talking really helps. If we talk to somebody, a closed one, a family member or a mental health professional, we get an insight ki actually what happened.
1: Exactly.
2: And what I am feeling. And sometimes feelings or emotions kafi overlapping hote hain. If I am feeling guilty about something, maybe that is anxiety or maybe that is more towards main bahut gussa hoon, I am irritable.
1: Ji.
2: To emotions ko hum bahut jaldi label kar dete hain.
1: Haan ji.
2: To wo labeling na ho, उसको एक क्लैरिटी मिले हमें एग्जैक्टली व्हाट वी आर फीलिंग, तो टॉकिंग हेल्प्स, स्पीकिंग टू आवर लव्ड वंस, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स एंड जस्ट सेटिंग फीलिंग द इमोशंस एंड लेटिंग इट बी।
1: बिल्कुल सही बात है। एंड मैम, हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी पर्सन का ग्रीफ नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है या फिर कब हमें प्रोफेशनल हेल्प या ग्रीफ काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है?
2: सी, ग्रीफ जैसा मैंने पहले मेंशन किया, कोई टाइम फ्रेम नहीं है।
1: जी,
2: राइट। बट कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जिसका हमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, विच कैन बी अ रेड फ्लैग विच इज लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग क्लिनिकल।
1: जी,
2: तो जब इंसान ग्रीफ में होता है, कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक द स्लीपिंग पैटर्न है डिस्टर्ब, सबसे मेजर आप लोग ने सुना होगा कि नींद नहीं आती है रात में, खाने पीने में काफी चेंजेस, वेट लॉस, वेट गेन, काम पे मन नहीं लगता है, दे आर जस्ट यू नो जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड दे आर जस्ट नंब, जोन आउट। एग्जैक्टली, तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स जो हमारे डेली फंक्शनिंग में हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी काम करने में एक बहुत एफर्ट लग रहा है जो हम पहले बहुत इजीली कर लेते थे। और अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम तक चलता है, लाइक 3 months, 4 months एंड वी आर नॉट गेटिंग बेटर, ऑफ कोर्स इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन, वी हैव टू कंसल्ट एंड वी हैव टू वर्क एंड वी कैन सीक ग्रीफ काउंसलिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: कॉन्वर्सेशन काफी डीप और रिलेटेबल होती जा रही है, क्योंकि ग्रीफ सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक पूरा इनर प्रोसेस होता है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर हमारा कोई अपना क्लोज वन ग्रीफ से गुजर रहा हो तो हम उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर और हमारे साथ हैं सिमरन मलिक। माम, कई बार ग्रीफ से गुजरने वाले इंसान से ज्यादा कंफ्यूजन उनके आसपास के लोगों को होती है कि उन्हें सपोर्ट कैसे करना चाहिए।
1: अगर कोई हमारा फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर ग्रीफ से गुजर रहा हो तो हम उसको सपोर्ट कैसे करें और कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें उनके आगे बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए?
2: वेरी नाइस क्वेश्चन
1: जी।
2: बिकॉज लिविंग इन अ इंडियन सोसाइटी वी गेट टू हियर लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक अरे चिल कर, कुछ exactly. नहीं होता है ना, ये डिप्रेशन एंग्जाइटी, यू आर स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं है, चल लेट्स गो आउट एंड हैव सम यू नो कॉफी एंड वी विल बी फाइन। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट्स मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल हेल्प नहीं करती हैं, बट द पर्सन हु इज इन ग्रीफ एक्चुअली नीड्स योर प्रेजेंस
1: एग्जैक्टली
2: एंड अ सेफ स्पेस कि जहाँ पे वो बस बैठ के कुछ भी बोल सके या कुछ भी नहीं तो बस चुपचाप बैठ सके
1: जी।
2: सो अगर कोई भी आपका क्लोज्ड वन अगर ऐसे किसी टफ फेस से गो थ्रू कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू बी देयर फॉर दैट पर्सन। आपकी प्रेजेंस आधा काम कर देगी
1: जी,
2: उसके बाद रेस्ट अपने आप होगा। बिकॉज इफ यू विल बी देयर इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू क्राई जस्ट सिट देयर एंड लेट हिम और हर क्राई
1: जी।
2: इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू वेंट आउट जस्ट बी देयर, आप उसकी बात सुनो एंड लेट द पर्सन वेंट आउट
1: जी।
2: तो हर किसी का क्योंकि अलग तरीका होता है एक्सप्रेशन का, सो व्हाट वी कैन डू टू हेल्प देम टू बी देयर, गिव आवर प्रेजेंस, गिव देम स्पेस टू से एनीथिंग, टू नॉट टू से एनीथिंग, एंड बी देयर फॉर देम इन ऑल द हैप्पी टाइम्स एंड एज वेल एज गुड टाइम्स
1: जी।
2: क्योंकि ग्रीफ में कोई कोई दिन ठीक भी होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: इट्स अ ग्राफ, ऊपर नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें लगे अरे आज तो हैप्पी है, चलो माय जॉब इज डन
1: जी,
2: वो फिर से रिलैप्स कर सकता है। एंड seeking a proper treatment is very important because nowadays we are using social media
1: ji,
2: to wahan pe bahut hi content available hai jo ki misguide bhi kar sakte hain
1: ji।
2: to apne aap hum kuch bhi google karke na practice kare, you have to go and seek help from the professional and do as they say।
1: बिल्कुल सही बात है। एंड मैम, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, तो क्या इमोशंस को दबा देना हीलिंग को और मुश्किल बना सकता है?
2: एग्जैक्टली अगर हम इमोशंस की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल सप्रेस इट
1: जी,
2: बिकॉज उनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है या वी आर नॉट गेटिंग दैट स्पेस टू एक्सप्रेस। तो सप्रेशन हेल्प्स यू फॉर द शॉर्ट टर्म
1: जी,
2: वो उस टाइम पे इट फील्स बेटर, यू आर एबल टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, बट फॉर लॉन्ग रन इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी। अगर हम बहुत समय तक उसको दबाते रहेंगे तो ट्रिगर्स आते ही रहेंगे एंड इट कैन बर्स्ट आउट इन वेरी बैड फॉर्म।
1: ओके,
2: तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट लेट इट गो
1: जी।
2: तो और स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ किसी के पास टाइम भी नहीं है, दे आर ऑल बिजी, सुबह उठते ही दे आर ऑल इन टू देयर वर्क एंड रात को सोने तक भी फोन मोबाइल एंड लैपटॉप, देयर इवन एवरीवन इज वर्किंग, सो उस टाइम पे वी हैव टू टेक अ पॉज फॉर एटलीस्ट सोने से 10 मिनट पहले वी कैन जस्ट स्मॉल एक हैबिट हम स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट राइट इट डाउन
1: जी।
2: क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि देयर इज नोबडी टू टॉक, है सब लोग, यू आर लिविंग इन अ फैमिली सेटअप जहाँ पे सब पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, स्पाउसेस हैं, बट समझ कोई नहीं रहे
1: जी।
2: तो उस केस में वी हैव टू जस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपनी बात तो निकालें अंदर से,
1: exactly.
2: तो वो निकल सकती है जर्नलिंग के थ्रू, और वी कैन जस्ट राइट इट डाउन ऑन आवर नोट्स ऑल्सो फोन पे, दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स। सो सप्रेशन इज नॉट एट ऑल हेल्दी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल रहे हैं आज के डिस्कशन से। एक और शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शो के फाइनल सेगमेंट में सिमरन जी से जानेंगे एक ऐसा मैसेज जो उन लिसनर्स के लिए होप और हीलिंग दोनों का काम कर सके जो इस वक्त किसी लॉस या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, बदलाव बड़ी बातें नहीं, छोटी सी शराफत मांगता है। अडॉप्ट राइट हैबिट्स।
2: तो बता जिंदगी।
3: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
5: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: वेलकम बैक, मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैम, शो एंड करने से पहले,
1: अगर कोई लिसनर इस वक्त किसी लॉस, हार्ट ब्रेक या इमोशनल पेन से गुजर रहा है तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उन्हें हीलिंग की तरफ बढ़ने की होप मिले?
2: अगर कोई भी इंसान अभी इस वक्त किसी भी लॉस से गुजर रहा है, चाहे वो कोई हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो एक फ्रेंडशिप का लॉस हो, जॉब लॉस हो, फाइनेंशियल सेटबैक्स, दिस इज फॉर एवरीवन। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके टू फील लो, इट इज ओके टू फील सैड। दिस सैडनेस फीलिंग इज नेचुरल, एवरी टाइम यू कैन बी हैप्पी।
1: एग्जैक्टली।
2: सो इस फीलिंग से भागना नहीं है, इस फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है, एंड यू आर नॉट अलोन। उस मोमेंट पे हमें लगता है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, I'm just grieving and I'm just going through a tough phase, but people are there for you. If they are not saying out loud to you, but at least they are there in the back end. And family, friends, jaisa bhi hai, kisi ke saath koi interpersonal conflict hai, I think we are humans.
1: Ji.
2: Toh wo cheez hume yaad rakhni chahiye. And you all have a safe place to come and talk to a psychologist, to a psychiatrist. There are many mental health providers nowadays. ज्यादा अवेयरनेस भी है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एक लोगों को रहता है चीज कि हम बात करेंगे तो हमारी बात कहीं और ना जाए।
1: एग्जैक्टली।
2: सो इसलिए नाउ देयर आर प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन भी है, इफ नो यू नो पीपल डोंट हैव टाइम, इफ दे डोंट वांट टू कम, कि हम ऑफिस से टाइम नहीं निकल पा रहे। टेलीफोनिक काउंसलिंग भी आजकल है बहुत ज्यादा, दे कैन अवेल दैट एंड दे हैव टू कम एंड टॉक एंड जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन।
1: Exactly, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच मैम।
2: मोस्ट वेलकम।
0: तो ये थी आज की मीनिंगफुल डिस्कशन ग्रीफ काउंसलिंग एंड हीलिंग पर सिमरन मलिक जी के साथ। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है, ग्रीफ को इग्नोर करना हीलिंग नहीं होती, बल्कि उसे समझना, फील करना और धीरे धीरे प्रोसेस करना ही हीलिंग की तरफ पहला कदम होता है। सिमरन मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करने के लिए। मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सोचो, एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही गाती थी, लेकिन उसके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना ही बॉलीवुड तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता। फिर भी एक दिन उसकी आवाज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और ये कहानी है प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। ऋचा शर्मा का जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव म्यूजिक की तरफ था। जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में बिजी रहते थे, तब ऋचा घंटों तक गाने सुनना और गाना पसंद करती थी। उनकी फैमिली ने भी उनके टैलेंट को जल्दी पहचान लिया। इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। लेकिन म्यूजिक की दुनिया उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। हजारों लोग सिंगर बनने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। ऋचा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पास टैलेंट था, लेकिन टैलेंट को सही मौका मिलना भी जरूरी था। क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ने उनकी आवाज को मजबूत बनाया। उन्होंने सिर्फ सीखने पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि गाने के इमोशंस को समझना भी सीखा। यही वजह थी कि उनकी सिंगिंग में एक अलग ही रूहानियत महसूस होती थी। जैसे जैसे वक्त बीता, ऋचा का सपना और बड़ा होता गया। अब उनकी मंजिल बॉलीवुड थी, लेकिन मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करना इतना आसान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि असली स्ट्रगल अब शुरू होने वाला है। और कैसे पहुंची वो मुंबई और कैसे रहा उनका स्ट्रगल, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हर साल हजारों लोग मुंबई आते हैं अपने सपने लेकर, लेकिन ज्यादातर सपने वहीं भीड़ में खो जाते हैं। क्या ऋचा शर्मा का सपना भी उनमें से एक बनने वाला था? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं ऋचा शर्मा की। म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऋचा शर्मा ने भी ऑडिशंस दिए, लोगों से मिली और हर छोटे बड़े मौके को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना मुश्किल होता, कभी अपनी आवाज को सही प्लेटफॉर्म मिलना, कई बार टैलेंट होने के बाद भी मौके नहीं मिलते, और यही सब ऋचा के साथ भी हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार रियाज करती रही। उन्हें पता था कि अगर एक बार भी सही मौका मिल गया तो उनकी आवाज लोगों के दिलों तक जरूर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग उनकी आवाज को नोटिस करने लगे। उनकी सिंगिंग में क्लासिकल टच था, लेकिन साथ ही एक मॉडर्न फील भी थी। यही कॉम्बिनेशन उन्हें दूसरे सिंगर से अलग बनाता था। और फिर आया वो मौका जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी, एक ऐसा गाना जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कौन सा था वो गाना, करेंगे इसके बारे में बात, मगर अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

कभी कभी एक ही गाना किसी आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी बदल देता है, और ऋचा शर्मा के लिए भी वो पल आ चुका था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना हर सिंगर का सपना होता है। ऋचा को जब बड़े प्रोजेक्ट्स में गाने का मौका मिलना शुरू हुआ था, तब लोगों ने पहली बार उनकी आवाज को सीरियसली नोटिस किया। उनकी आवाज में एक अलग ही पावर थी। वो रोमांटिक गाना भी गा सकती थी और हाई एनर्जी ट्रैक भी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे अलग बनाया वो था उनका सोलफुल एक्सप्रेशन। जब ऋचा गाती थी तो लगता था कि वो सिर्फ लिरिक्स नहीं गा रही बल्कि उन्हें महसूस भी कर रही है। धीरे धीरे उनके गाने हिट होने लगे, रेडियो स्टेशन पर उनकी आवाज सुनाई देने लगी, म्यूजिक लवर्स उनका काम याद कर रखने लगे, और बॉलीवुड को एक ऐसी सिंगर मिल गई थी जिसके गाने में सुर के साथ इमोशन भी था। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ प्रेशर भी आता है। अब चैलेंज सिर्फ सिंगर बनना नहीं था, चैलेंज था अपनी पहचान को बनाए रखना, और ये काम और भी मुश्किल था। और कैसे उन्होंने फेम के बावजूद जमीन से जुड़ना सही समझा, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

बहुत लोग सक्सेस मिलते ही बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। ऋचा शर्मा की पहचान सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर की नहीं बनी, उन्होंने डिवोशनल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंसेज में भी अपनी अलग जगह बनाई। ये उनकी वर्सेटिलिटी थी। वो सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हर जॉनर में अपनी आवाज का जादू दिखाया। म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बदलते रहे, नए सिंगर्स आते रहे, लेकिन ऋचा शर्मा की आवाज की डिमांड बनी रही। इसका सबसे बड़ा रीजन था उनका डेडिकेशन। आज भी वो रियाज को उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है जितनी करियर के शुरुआती दिनों में देती थी। उनके लिए म्यूजिक सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, म्यूजिक उनकी पहचान था, और इसी वजह से आज भी उनकी आवाज में वही सिंसियरिटी सुनाई देती है जो करियर के शुरुआत में थी। लेकिन उनकी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन अभी बाकी था, तो आगे क्या हुआ सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

कुछ सिंगर्स गाने गाते हैं और कुछ सिंगर्स गाने को जिंदा कर देते हैं। ऋचा शर्मा उन्हीं आवाजों में से एक है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। आज जब ऋचा शर्मा का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक सिंगर को याद नहीं करते, वो एक सफर को याद करते हैं। एक ऐसा सफर जो टैलेंट, मेहनत और पेशेंस से बना है। फरीदाबाद की एक लड़की से लेकर बॉलीवुड की पहचानी हुई आवाज बनने तक का सफर आसान नहीं था। इस सफर में स्ट्रगल था, इंतजार था, चैलेंजेस थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, म्यूजिक के लिए उनका प्यार। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और जब टैलेंट के साथ डेडिकेशन जुड़ जाता है तो एक आवाज लाखों दिलों की आवाज बन जाती है। और जब भी ऋचा शर्मा गाती हैं तो उनके सुर सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वो सीधा दिल तक पहुंचते हैं। और शायद इसीलिए उनका नाम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खास जगह बना के रखता है। ऋचा शर्मा एक आवाज, एक जज्बा और एक ऐसी कहानी जो हर देखने वाले को इंस्पायर करती है। तो ये थी पूरी कहानी इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम हैंडल और साथ में फेसबुक हैंडल पर भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभव को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ, देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन्स हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशन में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो, वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है, तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं। तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट्स आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहे की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपकी थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता, और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में।
2: देखिए, स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है, कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है। मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
2: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है, दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्परेरी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन, ये आपको एश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो, यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

हूँ वो किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, वो किसी करोड़ अरब के बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक फैसले की। सो वेलकम टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं यहाँ उन लोगों की बात करती हूँ जिन्हें दुनिया आज सक्सेसफुल कहती है, लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे शुरू के फेज में सिर्फ कन्फ्यूजन देखा था, सिर्फ फियर, सिर्फ अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनप्लग्ड एक ऐसा शो है जहां सक्सेस को सेलिब्रेट करने से पहले हम स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब हमें पता हो उसके पहले क्या क्या टूटा था। वो मोमेंट जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी से हाँ बोल के नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ दरवाजे के हैंडल पर था पर दरवाजा अभी खुला नहीं, अगला कदम क्या होगा, वो दरवाजा खुलेगा या बंद रहेगा, और जो डिसीजन लिया गया क्या वो सही साबित होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा मेरे शो में जिसका नाम है बिजनेस अनप्लग्ड। अगले लिंक में उस कदम के बाद की कहानी बताऊंगी जहां सोच सिर्फ अपनी नहीं रहेगी बल्कि पहली बार हकीकत से टकराएगी। सो स्टे ट्यून्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत. और कभी आपने सोचा है कि देश का बिजनेस बैकबोन बनता कैसे है? फैक्ट्रीज से, ब्रांड से नहीं, बल्कि लोगों की जिद से. और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम लेने से पहले थोड़ा सा रुकना जरूरी लगता है. इसलिए नहीं कि नाम थोड़ा मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि नाम के साथ वक्त जुड़ा हुआ है. आज मैं बात करने वाली हूँ घनश्याम दास बिरला के बारे में, यानी कि जीडी बिरला. ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का नाम नहीं है, ये एक दौर का नाम है. वो दौर जब इंडिया अपनी पहचान ढूंढ रहा था और कुछ लोग सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे देश का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे. जीडी बिरला किसी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं रहे, किसी ओवरनाइट सक्सेस का एग्जांपल नहीं. वो उस जेनरेशन से आते हैं जहां चीजें धीरे बनती थीं, पर गहरी बनती थीं. और आज जब हम बिरला ग्रुप बोलते हैं ना, तो लोग कंपनीज देखते हैं. पर मैं आज कंपनीज की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की जब बिरला एक जिम्मेदारी थी, ब्रांड नहीं. जीडी बिरला ने बिजनेस एक ऐसे वक्त में शुरू किया था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, पर उस सिस्टम में इंडियन बिजनेसमैन को सिर्फ एक रोल दिया गया था, सप्लायर्स का. डिसीजन लेने का हक वो उनके लिए नहीं था, पर जीडी बिरला ने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो इंडस्ट्री भी इंडियन होनी चाहिए और कंट्रोल भी. ये सोच आज सिंपल लग सकती है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था. उनके सामने सिर्फ बिजनेस चैलेंजेस नहीं थे, उनके सामने सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स का डाउट, परमिशंस का डिले और हर कदम पर ये फीलिंग कि आप आउटसाइडर हो. और यहीं से उनके स्ट्रगल की असली कहानी शुरू होती है. न सिर्फ पैसे कमाने के स्ट्रगल बल्कि इज्जत के लिए स्ट्रगल. जीडी बिरला ने अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की अपनी टर्म्स पे नहीं, सिस्टम के बीच रहकर. और हर स्टेप पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडियन एंटरप्रेन्योर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, लीडर्स भी हो सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते गए, प्रेशर भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सिंबल बन रहे थे. और जब आप सिंबल बन जाते हो ना, तो आपको चूज करना पड़ता है, चुप रहना है या स्टैंड लेना है. और जीडी बिरला के सामने एक ऐसा डिसीजन आने वाला था जो सिर्फ उनके बिजनेस को नहीं बल्कि उनके पूरे सफर को डिफाइन करता है. आज मैं कहानी को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि अगला कदम सिर्फ बिजनेस का नहीं है, वो कदम ब्रिटिश सिस्टम के सामने सीधा खड़े होने का है. वो कदम लिया गया या फिर रोका गया, और उसके बाद क्या जीडी बिरला का रास्ता और मुश्किल हो गया, ये सब आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद इस गाने के बाद. तो गाना सुनिए, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ जीडी बिरला के बारे में। कभी कभी ना जब इंसान के डिसीजन बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है ये सब अचानक हुआ होगा, पर सच ये है कोई भी बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं बचपन में ही तय हो जाता है, क्यों है ना। और आज मैं जीडी बिरला के उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जहाँ से उनकी सोच ने शेप लेना शुरू किया था। वैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बचपन के बारे में बात करना भी तो जरूरी है ना दोस्त। वो वक्त जब उनके पास पावर नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। घनश्याम दास बिरला जी का बचपन किसी पैलेस में नहीं गुजरा, ना ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्फर्ट था। वो एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आए जहाँ पैसा इम्पोर्टेंट था, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। उनके घर में बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं माना जाता था, बल्कि बिजनेस एक जिम्मेदारी था, एक वर्क था, और ये चीज उनके दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई। उनकी एडुकेशन भी सिर्फ डिग्री तक लिमिटेड नहीं रही, वो चीजों को देखते थे, लोगों की सुनते थे और फिर क्वाइटली अपना कंक्लूजन बना लेते थे। जीडी बिरला ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ मेहनत से ही नहीं चलती, दुनिया पावर स्ट्रक्चर से चलती है। और ब्रिटिश इंडिया में पावर का मतलब था कंट्रोल, कौन डिसाइड करेगा, कौन रूल बनाएगा और कौन सिर्फ फॉलो करेगा। ये सवाल उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेसमैन के नहीं, एक इंडियन के तौर पर भी उठ रहे थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब वो सिर्फ मार्केट नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम भी देख रहे थे। और जब सिस्टम को आप समझ लेते हो ना, तब उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर पाते हो। और यहीं से हम उस मोमेंट के पास आ जाते हैं जहां पिछले लिंक में हम रुक गए थे। जीडी बिरला के सामने एक चॉइस खड़ी थी, एक तरफ था चुप रहकर ग्रो करना स्लोली सेफली, दूसरी तरफ था बोलना, स्टैंड लेना और कंसीक्वेंसेस फेस करना। और ये चॉइस सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये चॉइस थी आइडेंटिटी की। क्योंकि अगर वो चुप रहते तो शायद उनका बिजनेस चल जाता, पर उनकी सोच वहीं रुक जाती। और अगर वो बोलते तो रिस्क था कि सिस्टम उन्हें टॉलरेट ना करे, परमिशन डिले हो जाए, प्रोजेक्ट सटक जाए और प्रेशर बढ़ जाए। इस डिसीजन के वक्त उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, वो वैल्यूज जो बचपन से उनके साथ थी, वैल्यूज जो उन्होंने घर से सीखी थी, एडुकेशन से समझी थी और एक्सपीरियंस से और स्ट्रांग हुई थी। और फिर उन्होंने वो किया जो उस दौर में बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पिक्चर के लिए सोचा, पर इसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आए, एक्चुअली इसके रिजल्ट सबसे पहले उनके खिलाफ गए। और यहीं से जीडी बिरला के फेस का सबसे अनकंफर्टेबल फेस शुरू हुआ, वो फेस जहां प्रिंसिपल्स और प्रोग्रेस टकरा जाते हैं। आज मैं इस कहानी को इसी पॉइंट पर रोक रही हूं क्योंकि अगला लिंक सिर्फ स्ट्रगल नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जब आप सही होते हो तब भी सिस्टम आपको कितना टेस्ट करता है। क्योंकि जीडी बिरला का स्टैंड उनके बिजनेस को स्लो कर गया, फिर उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग कर गया। ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, तब तक आप सुनते रहिए बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स लॉट।

डीनो जेम्स की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और इसी ट्रैक के बाद वेलकम बैक। कभी कभी ना जिंदगी हमें तुरंत पनिश नहीं करती, वो बस टाइम ले लेती है। जी डी बिरला के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन्होंने जो स्टैंड लिया था उसके रिएक्शन तुरंत नहीं आए, पर जब आए वो धीरे धीरे हर तरफ से आए। ब्रिटिश सिस्टम ऐसे काम करता था, डायरेक्ट नो नहीं बोलता, वो रुकावट डालता था, डिले करता था, आपको थका देता था, परमिशन अटकने लगी, फाइल्स मूव नहीं होती थी, मीटिंग्स कैंसिल होती थी, और हर बार रीजन एक ही होता, प्रोसेस। पर जी डी बिरला जानते थे ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज ये है कि तुम अपनी लिमिट्स भूल रहे हो, और जब सिस्टम आपको ये याद दिलाने लगे ना, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। लोगों ने एडवाइस देनी शुरू कर दी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रखो, ज्यादा बोलना जरूरी है क्या? और ये एडवाइस गलत भी नहीं थी, क्योंकि रियलिटी ये थी कि जी डी बिरला के पास बहुत कुछ दांव पे लगा था। उनकी फैक्ट्रीज, उनके लोग, उनकी रेपुटेशन, और उनके साथ उन लोगों का फ्यूचर जो उनके साथ काम कर रहे थे। और यहीं से प्रेशर सिर्फ बाहर का नहीं रहा, प्रेशर अंदर का भी हो गया। कभी कभी ना सबसे मुश्किल सवाल बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। क्या मैं ज्यादा दूर आ गया हूँ? क्या मेरी सोच मेरी जिम्मेदारियों से बड़ी हो गई है? जी डी बिरला एक ऐसे बिजनेसमैन थे, हाँ, पर वो इरेस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो जानते थे अगर उनकी वजह से एक भी फैक्ट्री बंद होती है तो उसका बोझ सिर्फ उन पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने हर डिसीजन और ज्यादा सोच के लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक और चीज चल रही थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज उनको क्लोजली देख रहे थे, कौन मिल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आइडिया किस मीटिंग में बोल रहा है। जी डी बिरला समझ गए थे ये बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है, ये कंट्रोल है। और जब कंट्रोल और ज्यादा टाइट हो जाता है तो सबसे पहले आपको फ्रीडम से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसी फेज में उनके करीबी लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गए। अब थोड़ा रुक जाते हैं ना, बाद में देखेंगे। और शायद यहीं पे कहानी का सबसे लोनली फेज शुरू होता है, क्योंकि जब आप बिल्कुल गलत भी नहीं होते और बिल्कुल सेफ भी नहीं होते तो आप अकेला पड़ जाते हो। जी डी बिरला के सामने अब एक नया सवाल खड़ा था, बिजनेस को बचाया जाए या प्रिंसिपल्स को। और ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं था, इस सवाल का जवाब उनके पूरे एम्पायर की डायरेक्शन डिसाइड करता। और आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ चीजें दिख रही हैं पर बोली नहीं जा रही। जीडी बिरला के आसपास सब कुछ पहले जैसा ही लगता था। फैक्ट्रीज चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, फाइल्स मूव हो रही थी, पर जो चीज मिसिंग थी वो थी राह की क्लैरिटी। सिस्टम ने उन्हें रोका नहीं, बस इतना किया कि आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। और जब ऐसा होता है ना तो समझ आ जाता है कि ये सिर्फ डिले नहीं है, ये एक सिग्नल है। जीडी बिरला इस सिग्नल को इग्नोर करने वाले लोगों में से नहीं थे। इन्होंने बोलना कम कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और ये साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं था, ये साइलेंस उनके डिसीजंस में भी आ गया। इस फेज में इनके सामने एक टेंशन नहीं थी, इनके सामने जिम्मेदारियों की एक पूरी लाइन खड़ी थी। वो लोग जो उनके फैक्ट्रीज पर काम करते थे, वो फैमिलीज जो इनडायरेक्टली उनके हर डिसीजन से जुड़ी हुई थी। जीडी बिरला के लिए ये कभी सिर्फ बिजनेस नहीं रहा। इसीलिए जब सिस्टम इन्हें प्रेशर में ला रहा था तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं सोच रहे थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे। और इसी बीच उनके दिन का एक हिस्सा नंबर से निकाल कर कॉन्वर्सेशन में चला गया। ऐसी बातें जो न्यूज़पेपर में नहीं छपती, ऐसी मीटिंग्स जहां सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती, वहां बात होती है इंडिया के फ्यूचर की, इंडस्ट्री की डायरेक्शन की। और इस बात का डिसीजन लेने का हक किसी के पास होना चाहिए। जीडी बिरला अब सिर्फ बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन को समझने लगे थे। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो ना कि आप सिस्टम के लिए सिर्फ एक नाम नहीं रहे, तो फिर न्यूट्रल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि अपनी कोशिश को और ज्यादा गहरा कर दिया। और शायद ये खामोशी ही थी जो सिस्टम को अनईजी कर गई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि जीडी बिरला क्या बोलेंगे, सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। तो अब आगे का रास्ता सीधा नहीं है, पर एक बात क्लियर है, अब जो भी होगा वो बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। स्टे विद मी।

स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। और आज मैं उस इंसान की कहानी को खोल रही हूँ जिसके नाम के साथ सिर्फ बिजनेस एम्पायर नहीं जुड़ता बल्कि एक सोच, एक प्रिंसिपल और एक लेगेसी जुड़ती है। जी डी बिरला के डिसीजन सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए नहीं थे, वो डिसीजन थे पूरे देश की इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए। जहाँ पहले इन्होंने खामोशी चुनी थी, अब उनकी स्ट्रेटेजी ने शेप लेना शुरू किया। रिस्क बहुत था, रेजिस्टेंस और ज्यादा थी, पर जी डी बिरला ने अपनी वैल्यूज और विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फैक्ट्रीज ने नाम किया, टीम्स ने फॉलो किया और धीरे धीरे सिस्टम को भी समझ आ गया कि ये इंसान सिर्फ सोच के लिए नहीं, पूरे इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी, इन्होंने एक बात समझ ली थी, सक्सेस सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं होती, वो होती है जब आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और फिर भी दुनिया आपको चैलेंज करती है। जी डी बिरला ने ये सीखा और ये उनकी स्ट्रेंथ बनी, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, सटल एक्शन और कंसिस्टेंसी। और ये जर्नी, ये स्ट्रगल और कैलकुलेटेड करेज, ये उनको लेगेसी बनाता गया। और जब आप इस कहानी के एंड पे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं, जो डिसीजन जी डी बिरला ने लिए, क्या वो सिर्फ बिजनेस के लिए थे या कुछ ज्यादा, कुछ टाइमलेस के लिए? यही वो मोमेंट है जहां आप खुद फील करेंगे, समझेंगे और आप इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि इम्पैक्ट कभी लाउडली अनाउंस नहीं होता, वो सटल और लास्टिंग होता है। और ऐसे ही एक इंसान का स्ट्रगल, एक विजन और एक लेगेसी हमारे सामने खड़ी होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी कुछ हटके। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो, अरे पूरा सुन के चलो, सुन के जाओ।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम।

सेहत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ शोर नहीं होता पर आवाज होती है, जहाँ लोग तो कम बोलते हैं पर पहाड़ ज्यादा कहते हैं। आज की कहानी आपको लेकर आई है अरुणाचल प्रदेश। आज की कहानी आपको लेकर जा रही है जीरो वैली 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी इंचली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर में जिसकी मंजिल बेहद खूबसूरत है। वो कहा है कि कुछ जगहें शोर से नहीं पहचानी जाती, वहां खामोशी ही नाम होता है। सोचो एक ऐसी वैली जो दिखावे के लिए सुंदर नहीं पर धीरे धीरे दिल में उतर जाए। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ जीरो वैली।

वो कहा है कि जीरो वैली सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये लोगों की कहानी है। शहर बनते हैं अक्सर इमारतों से और गांव अपनी पहचान से। जीरो वैली में आपको देखने को मिलेंगे आपातानी ट्राइब, जो नेचर के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि इनकी खेती का तरीका बहुत अलग है। पानी, फिश और फसल एक साथ चलती है। और इतना ही नहीं, एक और खासियत है इन लोगों की, यहाँ डेवलपमेंट का मतलब नेचर को जीतना नहीं, समझना होता है। इसीलिए इनकी फार्मिंग का तरीका भी बहुत यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर

भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली, जहाँ अभी हमने बात की अपातानी ट्राइब के बारे में, जाना उनकी जिंदगी जीने का तरीका। वहीं आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इनके फार्मिंग का तरीका, जो कि कहा जाता है कि बेहद यूनिक है, फार्मिंग विदाउट डैमेज। आज जब दुनिया ऑर्गेनिक का टैग ढूंढ रही है, वहीं जीरो उसे जी रहा है। कहा जाता है कि अपातानी फार्मिंग सिस्टम बिना फर्टिलाइजर्स, बिना मशीन्स के चलती है। यही रीजन है कि जीरो को वर्ल्ड का बेस्ट सस्टेनेबल मॉडल्स में माना जाता है। वो कहा है कि जो जमीन का ख्याल रखे, जमीन उसे कभी भूखा नहीं रखती। फार्मिंग का तरीका तो पता लगा कि कितना यूनिक है। एक और चीज है जो इस वैली को और भी ज्यादा खास बनाती है, वो है जीरो वैली में म्यूजिक फेस्टिवल। अब जरा सोच कर देखिएगा, इतनी शांति के बीच जब म्यूजिक बजता होगा तो कैसा लगता होगा। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल यानी इंडिया का एक यूनिक आउटडोर इंडी फेस्टिवल। ये इतना ज्यादा यूनिक है कि यहाँ लाउड म्यूजिक नहीं, सिर्फ नेचुरल ऑक्यूस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहा है कि यहाँ गाने भी पहाड़ों से पूछ कर बजते हैं। अब बात कर ही रहे हैं जीरो वैली की, तो मौसम को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। आगे जानेंगे कि आखिर जीरो वैली का मौसम कैसा है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
2: सर, आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जीरो वैल्यू हर मौसम में अलग लगता है, पर कभी खुद को नहीं बदलता। यही खासियत है इस वैली की। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ, और शो चल रहा है कल्चर कारवा। बात कर रही थी जीरो वैली के मौसम के बारे में, तो कहा जाता है कि यहाँ का मौसम ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। सुबह धुंध होती है, शाम को हल्की ठंड होती है, रात गहरी शांति होती है। वो कहा है कि कुछ जगह वक्त से तेज नहीं चलती, वहां वक्त रुककर सांस लेता है। तो कुछ ऐसी है अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली। और जीरो वैली के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अक्सर जीरो वैली आपको बदल देता है। तो आइए जानें कि क्यों जीरो आपको बदल देता है। कहा है कि लोग जीरो घूमने जाते हैं पर वापस थोड़े बदले हुए आते हैं। ये वैली, ये जगह आपको धीमा कर देता है, शायद इसीलिए इसका नाम जीरो रखा गया। यहाँ सिग्नल कम पर कनेक्शन स्ट्रांग होता है। वो कहा है कि जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ दिल कनेक्ट होता है। कुछ ऐसा ही है जीरो वैली। अक्सर यहाँ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन आते वक्त जीरो को अपने साथ ले आते हैं। जीरो की यादें, जीरो का एहसास, जीरो का मौसम, जीरो की याद, सब कुछ अपने साथ लिए अपने शहर वापस आ जाते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और भी क्या कुछ खास है इससे जुड़े हुए ट्रिविया के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
0: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जीरो की अपनी एक अहमियत होती है, जहाँ भी लग जाए बात कुछ और ही हो जाती है। इसीलिए शायद इस जीरो वैली को लोगों से इतना प्यार मिला। कहा जाता है कि एक छोटी सी बात जो जीरो को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है, यूनेस्को बायोस्फीयर रीजन के पास है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी अरुणाचल की जान है। वो कहा है कि जीरो वैली कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो शोर कम करता है और खुद से मिलवाता है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी कभी तेज लगने लगे ना, तो जीरो वैली याद कर लेना। कल्चर कारवा का आज का सफर आपको लेकर आया एक ऐसी वैली की तरफ जिसका नाम ही जीरो था, यानी कि जहां रफ्तार की जरूरत ही नहीं, जहां लोग खुद से मिलने आते हैं, पहाड़ों से बात करते हैं और नेचर को जानते हैं, जहां का म्यूजिक, खाना और लोग सभी बेहद प्यारे हैं। कल्चर कारवा का आज का सफर फिलहाल यहीं खत्म होता है। कल फिर से मिलेंगे एक नए जायके के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख कर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर सेफ्टी सबसे ऊपर।
2: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
3: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
4: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

पूरा हफ्ता भागदौड़ में निकल गया, ऑफिस, क्लासेस, घर के काम और डेडलाइंस। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और चाय का कप पास रखिए और अगले एक घंटे के लिए बॉलीवुड की यादों में चलते हैं। मैं हूं पलक और ये है म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज का सफर उस एक्टर के नाम है जिसकी जिंदगी भी फिल्म की तरह अप्स एंड डाउन से भरी रही, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर वापस आया। जी हाँ, आज का एपिसोड है संजय दत्त स्पेशल और शुरुआत करते

0: स्क्रीन पर जो इमोशन हम सभी ने देखे वो एक्टिंग से ज्यादा हकीकत थी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि जिस करेक्टर को आज हम संजय दत्त के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो रोल पहले उनके पास था ही नहीं। वो रोल उससे पहले ऑफर किया गया था SRK और विवेक ओबरॉय को। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स अपने हीरो खुद चूज कर लेते हैं और मुन्ना भाई ने भी वही किया। अब हीरो मिल गया लेकिन बजट नहीं था, फिल्म लिमिटेड बजट में बन रही थी और इसी वजह से वेडिंग सीक्वेंस तक एक रियल वेडिंग वेन्यू पर शूट किया गया। प्रोडक्शन टीम ने सोचा जब असली शादी का सेटअप मिल रहा है तो सेट लगाने का खर्चा क्यों किया जाए। और मजेदार बात ये है, शूटिंग के वक्त बजट की टेंशन थी और रिलीज के वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कई लोगों को लगता था कि मुंबई की स्लैंग और ह्यूमर महाराष्ट्र के बाहर नहीं चलेगा। उन्हें लगा कि फिल्म कुछ दिन चलेगी और फिर उतर जाएगी, लेकिन रिलीज के बाद हुआ उल्टा। मुन्ना भाई ने पूरे इंडिया को अपना फैन बना लिया और वही फिल्म विधु विनोद चोपड़ा के करियर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस में शामिल हो गई। जिसे लोग रिस्क समझ रहे थे, ऑडियंस ने उसे मैजिक बना दिया। वैसे अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो हर मुश्किल में सॉल्यूशन कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा देता है तो ये गाना उसके नाम कर देना, क्योंकि इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी से एम बोले तो गाना, जहाँ मुन्ना और सर्किट फुल फॉर्म में आ रहे हैं। गाना इंजॉय कीजिए। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

वेलकम बैक, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अभी तक बात हुई मुन्ना भाई की, जहां एक झप्पी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी। लेकिन संजय दत्त के करियर की असली रेंज तब समझ आती है जब मुन्ना भाई के बाहर सीधा वास्तव याद आती है। एक तरफ प्यार बांटने वाला मुन्ना और दूसरी तरफ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उलझा रघु, और यहीं से शुरू होती है वास्तव की कहानी। हर एक्टर के करियर में ना एक फिल्म आती है जो उसे स्टार से एक्टर बना देती है। संजय दत्त के लिए वो फिल्म थी वास्तव, और रघु का करैक्टर इतना पावरफुल था कि इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया। लेकिन रघु की कहानी जितनी इंटेंस थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी कास्टिंग भी थी। फिल्म में उनकी माँ बनी रीमा लागू, और हैरानी की बात ये है कि रियल लाइफ में वो संजय दत्त से सिर्फ एक साल बड़ी थी, लेकिन स्क्रीन पर दोनों को देखकर लगता था जैसे सालों पुराना माँ बेटे का रिश्ता हो। शायद इसी रियलिज्म की वजह से फिल्म इतनी असली लगती है। और रियलिज्म की बात निकली ही है तो संजय दत्त ने रघु को तैयार करने के लिए हॉलीवुड के आइकॉनिक कैरेक्टर टोनी मोंटाना से इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन उस कैरेक्टर को मुंबई की गलियों का रंग देकर पूरी तरह अपना बना दिया। और फिर आया वो क्लाइमेक्स जिसके बिना वास्तव की बात अधूरी है। एक ऐसा सीन जिसे देखकर आज भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि पूरा क्लाइमेक्स सिर्फ दो टेक्स में शूट हुआ था। दो टेक्स, बस दो टेक्स। कभी कभी इमोशंस को परफेक्ट करने के लिए ना 10 रीटेक्स नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए होती है। और जब दुनिया की भीड़ में सिर्फ अपने लोग याद आने लगे ना, तो शायद बैकग्राउंड में ये गाना बजाना चाहिए, मेरी दुनिया है। और इसी गाने के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है म्यूजिकल डायरीज ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।
3: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
5: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अभी तक हमने देखा मुन्ना भाई का दिल और वास्तव का दर्द, लेकिन अब बात होगी उस कैरेक्टर की जिसे देखकर लोगों ने पहली बार सोचा था, यार विलेन इतना स्टाइलिश भी हो सकता है क्या। कभी कभी ना फिल्म का हीरो याद नहीं रहता, लेकिन विलेन हिस्ट्री बना देता है। और 90s में अगर किसी विलेन ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी तो वो था बल्लू, खलनायक का बल्लू। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बल्लू का रोल पहले नाना पाटेकर को ऑफर करने का सोचा गया, लेकिन बाद में ये कैरेक्टर संजय दत्त के पास आया और फिर जो हुआ वो तो हिस्ट्री है। बल्लू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बना, संजय दत्त की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। उसके लंबे बाल, रफ लुक और एंटी हीरो स्टाइल ने पूरी जनरेशन को इम्प्रेस कर दिया। लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। 1993 ब्लास्ट केस में संजय दत्त की अरेस्ट की वजह से फिल्म लगातार हेडलाइंस में थी। लोग फिल्म से ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कंट्रोवर्सी भी प्रमोशन का काम कर जाती है। जितनी बातें बढ़ी उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ी, और जब फिल्म रिलीज हुई तो इंडिया ही नहीं ओवरसीज में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मतलब लोग बल्लू को पकड़ने थिएटर गए थे और उसके फैन बनकर निकले। वैसे कभी कभी स्कूल या ऑफिस में बिना गलती के डांट पड़ी हो और मन में आया हो ना हीरो तो मैं हूँ यार, तो ये गाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि गाने का नाम बल्लू खुद अनाउंस करने आ रहा है और वो नाम है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मूवी खलनायक से। गाना इंजॉय कीजिए, मैं हूँ आरजे पलक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेन करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।
2: पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: बाबा, बाबा।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: चल अर्जुन शुरू हो जा।
5: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
5: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
4: इरशाद।
5: अरे आगे खाली हो जाएगी।
4: क्या
5: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
4: कौन हम?
5: रोडवेज वाले।
4: ओके।
5: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
4: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
5: क्या बात कर रहे
4: हो? हाँ।
5: आगे सुनो।
4: सुनाओ।
5: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
4: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
5: अरे सुनो,
4: बाय।
5: मीठे लस्सी।
6: वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का एहसास। हमें जो भी सुने यही बोले, ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो, रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। सोचिए जरा, एक फिल्म आए और उसका एक वर्ड पूरे देश के डिक्शनरी का हिस्सा बन जाए। लगे रहो, मुन्ना भाई ने भी वही किया, गांधीगिरी। फिल्म के बाद ये वर्ड इतना पॉपुलर हुआ, लोग असल जिंदगी में भी यूज करने लगे। किसी से लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, फूल देकर जवाब देना, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत थी। राजकुमार हिरानी चाहते तो मुन्ना भाई की वही पुरानी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, सेम कैरेक्टर्स रखे, लेकिन कहानी बिल्कुल नहीं सुनाई, और ऑडियंस ने उस रिस्क को दिल से एक्सेप्ट किया। फिल्म क्रिटिक्स को भी पसंद आई, अवार्ड्स भी जीते और बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर दिया। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मुन्ना और सर्किट की जोड़ी। वैसे अगर कोई इंसान रोज रोज याद आ रहा हो और फोन करने की हिम्मत ना हो, तो बॉलीवुड ने उस फीलिंग के लिए गाना पहले ही बना दिया था। चलिए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी यादें। गाने का नाम है पल पल हर पल, फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। और इसी गाने के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का। आज मुन्ना भाई की जादू की झप्पी भी मिली, वास्तव का दर्द भी महसूस हुआ, बल्लू का स्वैग भी देखा और गांधीगिरी का मैसेज भी। यही तो खास बात है सिनेमा की, हर करेक्टर एक नई कहानी सुना जाता है। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। अगले वीकेंड फिर मिलूंगी किसी नए एक्टर, नई कहानियों और उन गानों के साथ जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। तब तक मुस्कुराते रहिए और यादों की प्लेलिस्ट चलते रहने दीजिए। बाय बाय।

चुस्की हो या गांव की गलियां, यहां हर बात में है अपनापन, हर आवाज में है कहानी, क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट
0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाती हैं या किसी कविता में सांस लेने लगती हैं। और शायद इसीलिए हर पोएट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है। हेलो हाय, मैं हूँ गीत और मेरे साथ आज बहुत सारे शायर बहुत सारे कवि मौजूद है। आज दिल शायराना शो लेकर आ गई हूँ। मेरे साथ हैं कर्नल संजय चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: शुक्रिया मैम।
4: मेरे साथ आशीष चौहान जी हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत शुक्रिया मैम।
4: नील जी हैं, नील सुनील जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
7: शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
4: तो सबसे पहले सवाल पर आती हूँ। सवाल ये है कि एक कवि होना, कविता लिखना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे थॉट आया कि आपको कविता अब लिखनी शुरू कर देनी चाहिए? कहाँ से ये आपके मन में ख्याल आया?
7: मेरी बात करूँ तो एक्चुअली हर व्यक्ति के अंदर एक कवि होता है।
4: हाँ जी।
7: हो सकता है उसको लय न मिले, बहर न मिले, रदीफ न मिले, काफिया न मिले, बट सबके अंदर एक शायर एक कवि होता है। तो मुझे भी बचपन में लगता था कि

0: ये दो लाइनें कह करके ना ये पूरे उपन्यास एक पूरा पिक्चर पूरा कैनवस आपके सामने पेंट कर दिया जाता है
1: जी।
0: तो एक लफ्ज आता है शब्द प्रस्फुटन,
1: हाँ।
0: कि वो दो लाइनों में सब कुछ कह देना,
1: हाँ।
0: जिसके लिए शायद एक कहानी एक उपन्यास कम पड़ जाए। तो मुझे लगा ये चीज है जिससे मुझे रूबरू होना चाहिए। और फिर किसी से मिले, किसी ने कहा कि अच्छा ये गजल होती है, ये शेर होते हैं, ये कविताएं होती हैं, नज्म होती हैं। हमें लगता था जब किसी को सुनते थे तो ये लगता था कि यार यही बात मैं कहना चाहता हूँ, बट मेरे थॉट को, मेरे विचारों को उन्होंने अल्फाज दे दिए।
1: हाँ जी।
0: और वो जब अल्फाज किसी शेर की सूरत में हो, कविता की सूरत में हो, तो कानों को भी अच्छा लगता था, जहन तक उतरता था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो कुछ नहीं किया, हमने पॉलिश किया, अपने अंदर के कवि को बाहर निकाला
1: जी।
0: और शायर होने की राह पे चल दिए।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आशीष जी आपके पास आते हैं, आपने कब लिखना स्टार्ट किया?
2: मेरे को म्यूजिक का बड़ा शौक था सुनने का, तो मैं तमाम सिंगर्स को सुनता था। लता जी को सुना, रफी साहब को सुना, किशोर कुमार साहब को सुना, हेमंत कुमार साहब को सुना।
1: क्या बात है।
2: तो फिर एक मन में ये बात थी, एक ललक सी जगी कि यार इनको लिखा किसने, इतने खूबसूरत नगमे लिखे गए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ गोपाल दास नीरज साहब की, मैंने वो एक उनका गाना सुना कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में,
0: क्या बात,
2: हजारों रंग के सितारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।
1: क्या बात है।
2: तो इतना मैंने कहा इतने खूबसूरत कलाम ये लिखे गए हैं, और इतनी खूबसूरत ये कविता है, रचना है, तो किस कवि की है, किस शायर की है। तो ये थे गोपाल दास नीरज, गीत ऋषि कहे गए। तो यहाँ से सुनना शुरू करा, यहाँ से अच्छा लगा, फिर उनको पढ़ना शुरू करा कि इस राइटर्स को पढ़ा जाए, इसके बारे में जाना जाए। तो ऐसे फिर पहले हिंदी के कुछ राइटर्स को पढ़ना शुरू करा, आनंद बख्शी साहब को, फिर ऐसे तमाम, फिर धीरे धीरे जब गजल सुनी, फिर गजल पर तमाम शायरों को पढ़ना शुरू करा।
1: हाँ जी।
2: और फिर जब जाके ये शायरी का चलन शुरू हुआ।
1: हाँ जी।
2: मेरे अंदर से।
1: क्या बात है। नील जी आपके पास आते हैं, आप बहुत खामोश बैठे हुए हैं और हमारी जनता जानना चाहती है कि आपके बारे में भी, और ये सवाल पर भी आते हैं कि कैसे लिखना शुरू किया, क्या वो थॉट्स थे?
3: थॉट्स तक की जहाँ तक बात है कि मैं हॉस्टल में, मेरी पढ़ाई हुई है, 90s हमारा दौर हुआ है।
1: हाँ जी।
3: उस टाइम पे अताउल्लाह खान साहब को बहुत गाने,
0: उनके लिरिक्स बहुत फेमस पॉपुलर हुए थे,
3: क्या ही कहें, मतलब एक अलग ही लेवल था उनका।
1: हाँ जी।
3: और कुमार सानू साहब,
1: हाँ जी,
3: सिंगर्स की तो बात करो तो, और नहीं तो मेरे घर से मेरे बड़े भाई थे, वो बहुत टाइमलेस गाने,
1: अच्छा,
3: जो मुकेश साहब के ये हमारे घर में कैसेट्स हुआ करते।
1: हाँ जी।
3: तो सुन सुन के बड़ा हुआ, तो म्यूजिक की रिदम की वहाँ से जानकारी ली
1: जी।
3: फिर एक होता ना कि तुकबंदी करने की कोशिश होती, स्टार्टिंग में तुकबंदी करने लगा तो अपने आप में हर किसी को, आजकल लड़कों को भी होता है कि जिसने दो लाइनें लिख ली वो समझ लग जाता है कि मैं कवि हो गया, मैं शायर। वो एक हुआ अंदर।
1: हाँ
3: अंदर
1: जी, हाँ जी।
3: तो हमारे हरियाणा से एक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं जो एडिटर रहे हैं बड़े बड़े शहरों के, बशीर बदर साहब के एडिटर
0: जी
3: रहे हैं।
0: जी, जी।
3: तो मेरे को जब पता चला, और मैं रोहिणी में था उस टाइम पे, मैं उनके घर पे गया, इतनी दिल में था कि चलो उनसे मिलता हूँ एक बार,
2: टूटा हुआ दिल।
3: उनके घर पे गया तो वहाँ के उनके जो नए थे लैंडलॉर्ड,
1: हाँ।
3: बोले कि वो यहाँ पे अब नहीं है, वो सोनीपत चले गए।
1: हाँ जी।
3: तो वहाँ से फिर सोनीपत गया थोड़े दिन के बाद, और टाइम निकाल के,
1: हाँ जी,
3: मेरे को उन्होंने पहली किताब, हाँ। जो मेरे को दी थी, उन्होंने गिफ्ट की थी, उसका नाम था हरे रिबन की पत्तियाँ।
0: हाँ।
3: वो थी बशीर बदर साहब की।
2: क्या बात है।
3: तो इस तरह कह सकता हूँ कि बशीर बदर साहब को, मुनव्वर राणा साहब को,
1: हाँ जी,
3: इनको पढ़ते पढ़ते आगे आए। फिर और गहराई में गए तो गालिब साहब को पढ़ा, मीर साहब को पढ़ा।
1: जी, जी, जी।
3: तो यूं करते करते बस
1: जी, आपने जैसे कहा कि आपने काफी अच्छे पोइट्स को, शायर्स को पढ़ा है, तो यही सवाल है मेरा, आज के जो यंग पोइट्स जो अपने आप को कह रहे हैं, तो वो आई थिंक बहुत लोगों को सुन नहीं पाते, और मुझे लगता है कविता में सबसे पहले आपको सुनना बहुत जरूरी है कि आप सुनकर आगे आए, क्योंकि अगर मैं देखूं और जो अदर आर्ट्स हैं, जैसे अगर मैं म्यूजिक की बात करती हूं, डांस की बात करती हूं, तो उनका एक मेंटोर होता है, वो अपना एक मेंटोर चुनते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं जो अपना गुरु बनाते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप पहले सीख कर आगे आए?
3: मेरा मानना इसमें ये है कि होमवर्क, आप किसी फील्ड में चले जाओ, होमवर्क सबसे पहला ही कदम है, और होमवर्क उसी को बोलते हैं जब जिस फील्ड में आप अपना काम कर रहे हो।
1: हाँ जी।
3: एक शहर को होमवर्क वही है कि बड़े बड़े शहरों को पढ़ना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, देखो वो भी दो तरह का है, इसको चरवा बोलते हैं, हम चोरी बोलते हैं, ठीक है, तो वो चरवा करने के लिए नहीं, उसको ये देखने के लिए कि कौन शहर अपने मिसरे को किस खूबसूरती के साथ, किस सलीके के साथ बनाता है। एक शेर को किस

0: जैसे अगर आप कहोगे कि मैंने बहर सीख ली तो मैं शायर हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता।
1: वो इमोशंस नहीं आएंगे आई थिंक।
0: ख्याल आपके अंदर से, आपके जहन से, आपके दिल से निकलते हैं और वो किस गहराई से निकलते हैं और उसको आप कितनी खूबसूरती के साथ आप उसको लफ्ज दे सकते हो, क्राफ्ट दे सकते हो, वो सीखना पड़ता है।
1: हाँ जी,
0: ख्याल तो आ सकते हैं लेकिन क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है। क्राफ्ट कब आएगा? जब आप किसी को पढ़ोगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बातें बहुत खूबसूरत चल रही हैं लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क शायराना।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती।

0: होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना।
1: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं, उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरेस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

0: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है आज दिल शायराना और मैं आपके साथ हूँ गीत। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे कवि मौजूद हैं जिनसे ढेर सारी बातें हो रही हैं। सर आपसे भी एक सवाल है
1: जी।
0: ये सवाल बहुत पहले बहुत बहुत पुराने टाइम में अगर हम जाएं शिवकुमार बटालवी साहब जो पंजाब के बहुत ही फेमस शायर और कवि हुए हैं उनसे पूछा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि कविता किस चीज से पैदा होती है, तो ये सेम सवाल ही पूछना चाहूंगी, कविता किस चीज से पैदा होती है, आपके पर्सनल इमोशन से या ऑब्जर्वेशन से?
1: मुझे लगता है दोनों से। ऊपर वाले ने हमें कई नेमतें बख्शी हैं, तो एक है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारी हम सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं, जो इनकी लिमिट से बाहर होता है वो पावर ऑफ विजुलाइजेशन, कि जो सेंसेस की लिमिट से बाहर हम विजुलाइज करें तो शायर यहाँ तक पहुँचता है। एंड थर्ड इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने विजुलाइज किया उसको एक्सप्रेस कर लें। तो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है एंड विजुलाइजेशन उसको नॉच पर ले जाता है, एंड ऑब्जर्वेशन इज द थिंग विच कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ अ पोएट्री। तो मुझे लगता है दोनों जरूरी है। और एक बहुत जरूरी चीज है अभाव।
0: अच्छा जी,
1: किसी चीज का ना होना।
0: हाँ।
1: तो अभाव जो आपके जीवन में प्रभाव डालता है।
0: हाँ।
1: वो एक्चुअली कविता में निकल करके
0: तो आता मतलब है। ये सही कहते हैं कि हार्ट ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं
1: वो एक इमोशन जोड़ता है।
0: अच्छा।
1: हार्ट ब्रेक इज वन ऑफ द इमोशंस इन द शायरी। तो आप देखिए किसी भी चीज को, वही हल होता है, वही कटहल का पेड़ होता है, वही गांव होता है। कहते ना कि एक शायर का है कि फाका कश्मों की नजर से देखो, पूनम का चांद भी तुम्हें रोटी नजर आएगा। तो आप जिस भाव में रहते हैं उसी भाव से आप देखते हैं। जब आप दूसरों को पढ़ते हैं, दूसरों को सुनते हैं, तो जो जिस मेंटल थ्रेशोल्ड पे आप होते हैं आपको वो रंग उभर करके सामने आने लगता है। उसी पेड़ में आपको कविता दिखाई देने लगती है, किसी को उसी पेड़ में शहीदों की लाशें टंगी हुई दिखाई देती है, किसी को उसी पेड़ में घोंसला नजर आता है, किसी को उस पेड़ में उम्र नजर आती है।
2: हर किसी की अपनी मंजर कसी।
0: आपसे एक सवाल है आशीष जी, सवाल ये है कि एक समय पर मुंशी प्रेमचंद जी जैसे जो कवि थे वो समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे थे अपनी कविताओं के जरिए, तो आज के वक्त में कितने परसेंट ऐसे कवि या ऐसे शायर रह गए हैं जो वाकई में समाज को आईना दिखा रहे हैं अपनी कविताओं के जरिए?
2: नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल मुझसे किया। और मुंशी प्रेमचंद जी का मैं बताऊं, हालांकि हमने स्कूल वक्त में मुंशी प्रेमचंद की कविताएं पढ़ी है, कहानियां पढ़ी है।
0: हाँ जी,
2: मगर मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ, अश्मिता थिएटर ग्रुप से पास आउट हूँ। तो वहाँ पर जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था तो उस वक्त एक बड़ा सवाल मेरे लिए आया कि उन्होंने कहा कि हमारी जो शिल्पी मारवा जो हमें थिएटर क्लासेस देती है, उन्होंने बोला कि कुछ नाटक वाटक रेडी करो, इम्प्रोवाइज करना है। तो दो राइटर्स उस समय सजेस्ट किए गए मेरे को, एक आदम गोडवी साहब भी
1: थे,
2: एक शारदा सद मंटो साहब थे और एक मुंशी प्रेम साहब की कहानियां। तो वहां से मुंशी प्रेम साहब को जब मैंने पढ़ा, और जो आपका सवाल है कि आज के वक्त में कौन ऐसा कवि है जो इस तरह के काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, उस दौर में भी थे, आज के दौर में भी हैं। पर सवाल ये है कि कितना उनको ये मीडिया आज की डेट में तवज्जो दे रहा है।
0: Exactly.
2: या उनको सुनने वाले कितने लोग हैं, ये बड़ा सवाल है। कवि तो हर दौर में आके कुछ ना कुछ लिखता जरूर है। मैंने भी कुछ ऐसी कविताएं लिखी हैं। मैंने खुद कहा कि खाली दिल का एक कोना हो गया है, रोज का ही हंसना रोज का रोना
1: हो गया है। वाह वाह वाह।
2: भाग पाता है कहां जिंदान से, खेला जाता है यहां इंसान से, आदमी जैसे खिलौना
1: हो गया है।
0: क्या बात
1: है,
0: बहुत बढ़िया।
2: ये जो चल रहा है, वैसे बहुत सारे कवि हैं, मैं कुछ कवियों के नाम जैसे बता नहीं, मृणाल की मैं बात करूं
0: जी,
2: और उन्होंने भी कुछ कविता इस तरह से कही हैं। तो काफी सारे कवि हैं जो इस तरह की कविता कहते हैं, अमर शक्ति जैसे कवि हैं, तो बहुत सारे कवि हैं। तो बात सभी रख रहे हैं अपनी, मगर कितना उनको पढ़ा जा रहा है, कितना सुना जा रहा है, कितनी कवरेज उन्हें मिल रही है, ये बड़ी बात है।
1: एक खूबसूरत चीज ये हुई है कि मीडिया के आने से चीजें आपके हाथ में अवेलेबल हो गई। पहले किसी की खिताब रिलीज हुई तो पता चलता था, मिलती नहीं थी पब्लिकेशन हाउस में। अभी क्या हुआ, अवेलेबिलिटी जो हो गई है तो जेन जी भी उसको पढ़ रहा है, जेन अल्फा समझने की कोशिश कर रहा है, मिलेनियल्स दे आर आल्सो। तो क्या होता था पहले, जो अवेलेबिलिटी नहीं थी, अवेलेबिलिटी होने की वजह से क्या हुआ है, हमारे भाव को शब्द मिलने लगे हैं। और चूंकि वी आर एबल टू क्लियरली डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आर इमोशंस, सो वी आर गेटिंग सॉल्यूशन थ्रू द पोएट्री। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच इज हैपनिंग। एंड उसके लिए मैं बताऊं, एक नाम काफी नहीं होगा।
0: हाँ।
1: मैं दायरा नहीं बांधना चाहता।
2: हाँ, तो काफी हो।
1: हाँ, एक शेर भी किसी का वो दिल पे लग जाता है तो हमारी सूरत बदल जाती, सीरत बदल जाती, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। कोई एक कह देता है किसी लड़की के बारे में, किसी महिला के बारे में, देश के बारे में, हमको लगता है यार ये हमने क्यों नहीं सोचा। तो वो जो भावना अंदर आती है तो वो मुझे लगता है कि वो किसी नाम में नहीं बांधा जा सकता, वो कविता कविता इतनी तीव्र होती है कि हाँ, वो हृदय तक छू जाती है। हाँ, हाँ, उसके लिए एक शायर या किसी कहानीकार को या किसी थिएटर आर्टिस्ट को बनना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा।
0: अभी हम बातों को विराम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं क्योंकि वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: का।
1: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
2: अरे एक्सीडेंट, पर कैसे हुआ?
1: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
3: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।

0: फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना और खूबसूरत बातें चल रही हैं। यहाँ पर महफिल लगी हुई है कवियों की, तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन से एक मिलता जुलता अनिल जी आपसे क्वेश्चन है। जैसे सर ने कहा कि आज अवेलेबिलिटी हो गई है, लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि लोग सुन पा रहे हैं लेकिन शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से वो लिखी गई थी चीजें। तो हम एक ऐसे शायर की बात करेंगे जो मुझे लग रहा है इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोग उनकी जो नज्में हैं वो सुन रहे हैं, जॉन एलिया साहब।
1: हाँ।
0: तो शायद लोगों को उनके बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं होगा और जस्ट अच्छा लग रहा है सुन के और जस्ट वो उनसे इंस्पायर्ड होके आगे लिख भी रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोग इसलिए लिख रहे हैं कि वो कहीं वायरल हो जाएं फेम के लिए, और जो लोग कुछ इस तरीके की चीजें लिख रहे हैं वो हो भी जाते हैं, इनफैक्ट फेमस हो जाते हैं। तो कितना परसेंट आप मानते हैं कि आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो सिर्फ फेम के लिए भी लिख रही है?
2: अगर मैं परसेंटेज बात करूं तो आई थिंक 70%।
0: जी,
1: लेकिन अच्छी चीजें लिख करके करके फेमस होना वो भी ठीक है।
0: हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी सही,
2: इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ कि लोग फेम के लिए लिख रहे हैं।
0: जी
2: ठीक है, कभी कभी शायद ये चस्का होता है, कभी कभी मेरे को लगा है, लेकिन जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो मेरे को फिर गाली देकर कहते हैं कि यार तू ये इतना बकवास कम कर सकता है तू।
0: अच्छा जी,
2: फिर वो मुझे इस तरह गिराते हैं कि मैं धरती पे गिर जाता
0: हूं। बट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि लिटरेचर में क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, कि फेम के लिए ही सिर्फ लिखना?
2: लिटरेचर का बड़ा नुकसान है क्योंकि फेम के लिए लिखना है। चलो जैसे आज सोशल मीडिया है, आज मैं उन सब को कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे वायरल है, मेरा एक शेयर कोई वायरल हो गया, ठीक है, उसको मिल गए 1 मिलियन व्यूज, उस 1 मिलियन में कितने शेयर होंगे जिन्होंने उसको सुना होगा?
0: एग्जैक्टली,
1: क्या बात,
2: कितने होंगे? तो 90% 80% उनको सिर्फ वो सुन रहे हैं जिनको वो बस, उनको ये नहीं पता कि शेर की क्राफ्ट क्या है, खूबसूरती क्या है, सलीका कुछ नहीं पता उनको, बस उनको बात लगी, दिल पे लगी, जिनको जिन्होंने अपने एपिसोड किया उन्होंने उसको लाइक किया, व्यूज बढ़ा, तो देखा जाए तो शेयर ने तो नहीं उसको फेमस किया ना।
1: मैंने एक शेर कहा था कि अश्क बहने में वक्त लगता है, गम को ढहने में वक्त लगता है, और खुद से ये शेर कहा था मैंने खुद के लिए कि आप शायर हो जान लो जल्दी, आप शायर हो
3: जान लो जल्दी,
1: जान लो जल्दी, शेर कहने में वक्त लगता
3: है। वाह वाह, क्या बात है।
1: तो जो बात है, देखिए वायरल होना एक अलग चीज है, शायर होना एक अलग चीज है, अलग बात है, दोनों बातें अलग है। अगर आप शायर हैं और तब आप वायरल हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है।
2: मैडम, मैं इसमें एक बात कहूँ,
0: जी जी,
2: और ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, हर उस शायर के लिए कह रहा हूँ, जो मेरे दोस्त भी होंगे, जो जो शेर की शेरियत होती है, सलीका होता
3: है,
2: वो जरूरी नहीं है कि वो अवाम के बीच में हो, उसी को आता है। बहुत से ऐसे शायर बैठे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, अपनी गलियों में घूम रहे हैं, उनको लोग जानते नहीं है, और वो हम लोगों से बहुत कहीं कहीं ज्यादा अच्छे शेर कहते हैं,
1: बहुत अच्छा, उनका हमसे भी बहुत अच्छा मयार है, बहुत अच्छी अरूज के
2: नॉलेज है, ज़बान की समझ है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि उनको स्टेज जाना है।
1: हाँ,
2: मेरा एक दोस्त अभी एक्सपायर हुआ है जस्ट 4-5 महीने पहले, को लोग कहते थे स्टेज पे आप बड़े बड़े रिक्ता तक भी उसके बढ़िया कॉन्टेक्ट रहे हैं, फरद साहब भी उसके खास रहे हैं, मना कर देता स्टेज पे आने के लिए, और क्या कमाल का शेर रहा है। तो शेर कहना अलग है, वायरल होना अलग है।
3: एक्चुअली पहले आदमी
2: मेरा मानना ये है कि अगर मेरा खुद का एक शेर अगर वायरल होगा ना तो शायद वो अच्छा नहीं होगा।
0: जी जी जी, मतलब जो समझ में आ जाए इजीली। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है आज दिल शायराना और मैं आपके

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ गीत हूँ और मेरे साथ आज स्टूडियो में बहुत सारे कवि मौजूद हैं। सर आपसे सवाल है, सवाल ये है कि जो स्टेज पोएट्री होती है उसका एक अलग ही प्रेशर होता है
1: स्टेज पोएट्री का।
0: जी, अभी फराज साहब की आपने बात की है तो फराज साहब कहीं इसी के इन्हीं के शेर पे बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा की मोती, खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले।
1: क्या बात।
0: तो अगर कोई इसको पढ़े कहीं या वो ही पढ़ते पहले कहीं तो शायद लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे होते जिनको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ आता। तो जब आप स्टेज पर होते हैं, काव्य गोष्ठी में होते हैं, ओपन माइक में होते हैं, तो क्या लगता है ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कितने परसेंट आपकी क्रिएटिविटी को अफेक्ट करती है?
1: एक मुझे रामचरितमानस, तुलसीदास जी भी कवि हैं।
0: जी जी जी।
1: तो मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा।
0: हाँ,
1: उन्होंने एक चौपाई लिखी है अयोध्या कांड में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो कहते रामचंद्र जी की जब बारात निकली तो सब जनकपुरी के लोग देख रहे थे, तो उसमें जो लड़कियां शादी के लायक थी उनकी भावना ये थी कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए।
0: जी,
1: जिनके वो जो उस उम्र के लड़के थे उनको लगा हमारा भाई ऐसा होना चाहिए। जो माता पिता की उम्र के थे जिनके बच्चे वैसी उम्र के, उनको हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो एक्चुअली दैट एक ही मूर्त है और जो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है वो उसको ऐसे समझ रहा है।
0: जी।
1: तो एक्चुअली कोई प्रेशर नहीं होता स्टेज पोएट्री का। आप जब लिखते हैं तो आप एक या दो अंदाज में लिखते हैं कि अच्छा मैं इसको ऐसे, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं ये कहना चाहता हूँ। वहीं एक जनजी बैठा है वो उसको अपने तरीके से समझता है, वहीं बुजुर्ग बैठे होते हैं वो अपने तरीके से समझते हैं। अब जैसे एक बाप के ऊपर कविता लिखी थी मैंने, गजल लिखी थी। ठीक है, अब वो जब गजल मैंने पढ़ी तो जो बुजुर्ग थे वो रो रहे थे और जो बच्चे थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज हमने ऐसे क्यों नहीं समझी।
0: हाँ,
1: तो अपने माता पिता की तरफ वो रो नहीं रहे थे।
0: हाँ,
1: वो देख रहे थे अच्छा ये भी किया फादर ने और ये हम समझ नहीं पाए। और मैंने कहा फादर एक अपॉइंटमेंट होता है, ये जेंडर से बंधा हुआ नहीं होता है, ये माँ अगर उसका रोल अदा करे तो वो भी बाप ही है।
0: क्या बात है,
1: तो वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई प्रेशर नहीं होता है, आप अपनी भावना से लिखते हैं। हर व्यक्ति हर शेर को अपने तरीके से समझता है और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको अपने अशार का नया मीनिंग श्रोताओं के थ्रू समझ में आता है। कोई आके कहता सर आपने ये कहा, मैं तो ये हो गया, तो मुझे समझ में आता अरे मैंने तो ये सोच के लिखा ही नहीं था, लेकिन उसका फ्रेम ऑफ माइंड था इसलिए उसने ऐसे समझा। और जब आप नेचुरली शायरी करते हैं और आप जनता से, एक्चुअली वहां शायरी करने नहीं जाते स्टेज पे, यू गो टू यू नो इंटरेक्ट विद देम, तो एक्चुअली बातचीत हो रही होती है और जब समझने वाला समझना चाहता है तो कहने वाले को कहने मजा आता है।
0: जी सर, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जरूर, आपकी पॉजिटिविटी का राज क्या है? जी
1: मुझे लगता है कि जिंदगी में आई हैड डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ आई विल बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो इफ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम आई विल नॉट सी द प्रॉब्लम। और मैं प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखता हूँ। तो बचपन से ऐसा हुआ, जैसे कुछ भी हुआ तो मुझे लगा यार किसी ने नहीं, किसी ने तो किया होगा मुझसे पहले तो मैं कर सकता हूँ।
2: समस्या है तो समाधान भी है।
1: बिल्कुल। और अगर किसी ने नहीं किया तो लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन। और जो चीज आपके वश में नहीं उसकी चिंता क्या करनी है?
0: क्या बात है,
1: जो चीज आपके वश में है वो तो आपके वश में है ही।
0: एग्जैक्टली,
1: सी एवरीथिंग इज गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू क्लेम।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। हम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, जहाँ ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ानी है, उन यंग पोइट्स तक पहुँचानी है जिनके लिए कविताओं की गहराइयों में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हम रचनाओं पर बढ़ते हैं, बिकॉज इतनी सारी बातें कर ली हैं और हमारे लिसनर्स अब मुझे लगता है बहुत एक्साइटेड होंगे कि आपकी रचनाएं सुने वो। तो क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक या स्टेज की तालियां, या एक कमरे में अकेले बैठकर कोई बहुत ही अच्छी लिखी हुई लाइन, क्या ज्यादा पसंद है?
1: देखिए, आप किसी भी शहर से पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे तन्हाई पसंद है, ठीक है ना। और बट ये होता है कि जब मिल बैठते हैं चार यार लोग, तो महफिल जमा हो जाती है शायरी से। और शायर तो हर वक्त ही अपने एक मंजर में रहता है, मतलब एक नशे में रहता है अपनी शायरी के। और इसलिए कहते हैं कि शायर इज ए फिलोसोफर, शायर इज ए फिलोसफी। और क्या, और मैं जहाँ तक समझ पाया शायरी के बारे में, कुछ नया कहना शायरी है। जो लोग कह के जा चुके हैं वो कह के जा चुके हैं। रिवायती शायरी इतनी है कि उसमें आप नया क्या कह सकते हो, वही जा भी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कुछ नया कहना शायरी है। तो मैं कुछ अपने कलाम सीधा सीधा अपने
0: बिल्कुल
1: आपके आगे।
0: जी जी,
1: मतलब देखिए कनल साहब,
2: इरशाद
1: के आते हैं जो कमाल आते हैं, आते हैं जो
2: कमाल आते हैं,
1: कमाल आते हैं जब भी तेरे ख्याल आते हैं।
2: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आते हैं जो कमाल आते हैं जब भी तेरे ख्याल आते हैं, रोज लिखते हैं खत तुझे जाना, रोज लिखते हैं खत तुझे जाना, रोज दरिया में डाल आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और मैं बढ़ाता हूँ फूल की जानिब,
2: मैं बढ़ाता हूँ फूल।
1: देखिए, मैं मोहब्बत का शहर और मोहब्बत से बात करता
0: हूँ। जी जी,
1: मैं बढ़ाता हूँ फूल की जानिब, हाथ में तेरे गाल आते हैं।
2: आए, आए, आए,
0: क्या बात,
2: क्या बात है,
0: बहुत।
1: और शेर पढ़ते हैं जाके महफिल में, तमाम शहरों की नजर मेरा ये शेर, कि शेर पढ़ते हैं जाके महफिल में अपने दिल के निकाल आते हैं।
2: आए, आए, आए, आए, वाह,
0: बहुत।
1: ये मैंने आपकी बात का उत्तर भी दे दिया।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर आपके पास आते हैं, क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक की तालियां या फिर कमरे में बैठकर सुकून से लिखी हुई कोई बहुत ही खूबसूरत रचना?
3: सही बताऊं तो दो कैरेक्टर होते हैं इंसान के।
0: हाँ जी,
3: अगर मैं बिंदास होता हूँ तो बिंदास ही होता हूँ। और अगर मैं जब
1: उदास होता हूँ तो उदास।
3: शायरी की बात करूँ, अदब की बात करूँ
2: जी,
3: तो मुझे अपनी कैफियत पसंद है।
0: जी
2: वाह,
3: अपनी कैफियत में रहना ही पसंद करता हूँ।
0: जी जी, तो उस कैफियत में जब आप थे और आपने कोई रचना लिखी और आज आप अगर हमारे लिसनर्स तक पहुंचा पाए तो वो रचना कौन सी होगी?
3: चलो सुनिएगा कि पैरहन आखिर बनी आवाज का।
1: क्या बात,
3: पैरहन आखिर बनी आवाज का, एक बदन है खामोशी आवाज का।
2: हाय हाय, मुकर्रर फिर से पढ़िए। वाह वाह, क्या बात।
3: पैरहन आखिर बनी आवाज का, एक बदन है खामोशी आवाज का। लौट आओ लफ्ज वापस दो मेरे।
2: लौट आओ लफ्ज वापस,
3: लौट आओ लफ्ज वापस दो मेरे, घुट रहा है दम मेरी आवाज
0: का।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह।
3: लौट आओ लफ्ज वापस दो मेरे, घुट रहा है दम मेरी आवाज का।
2: वाह,
3: कान रखे हैं मेरे दहलीज पर,
2: कान रखे हैं मेरे,
3: कान रखे हैं मेरे दहलीज पर, और सन्नाटा तेरी आवाज का।
2: क्या बात है, और सन्नाटा तेरी आवाज का,
0: बहुत खूब।
3: तो मेरी ये कैफियत होती है।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपके पास आते हैं, आपको क्या ज्यादा पसंद है?
1: मुझे एक्चुअली अच्छे सुनने वाले लोग चाहे जाओ।
0: हम अच्छे सुनने वाले हैं। तो कोई रचना जो आज आप हमें सुनाना चाहें?
1: मैं ये सबकी नजर करता हूँ जो लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं।
0: जी जी जी,
1: भूख से थोड़ा कम खाता हूँ बाप हूँ मैं, भूख से थोड़ा कम खाता हूँ बाप हूँ मैं, खुद में खुद को दफनाता हूँ बाप हूँ मैं। दिन है कम और कंधों पर है बोझ बहुत, दिन है कम और कंधों पर है बोझ बहुत, सांस चढ़े तो घबराता हूँ बाप हूँ मैं। खुद को थपकी देना भी आसान नहीं, खुद को थपकी देना भी आसान नहीं, लोरी भी खुद ही गाता हूँ बाप हूँ मैं। बच्चों की नजरों से बात समझता हूँ, बच्चों की नजरों से बात समझता हूँ, फिर खुद को भी समझाता हूँ बाप हूँ मैं। सच की झोली जब भी खाली होती है, झूठे किस्से दोहराता हूँ, बाप हूँ मैं, बिगड़ी औलादों को अच्छा कहता हूँ, बिगड़ी औलादों को अच्छा कहता हूँ, बेबस होकर इतराता हूँ, बाप हूँ मैं, चाहे चूक हो सारी मेरे बच्चों की, आंखें खुद को दिखलाता हूँ, बाप हूँ मैं। और ये शेर रोज सवेरे खुद को पैदा करता हूँ, रोज सवेरे खुद को पैदा करता हूँ, रात को थक कर मर जाता हूँ।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही कहा है फादर के लिए कि एक आदमी है जो मुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। और अब हम साइनिंग ऑफ पे आते हैं, और जाते जाते आप सभी से एक सवाल है, अगर आपको कविता को डिस्क्राइब करना हो एक शब्द में या एक लाइन में, तो वो क्या होगी? सर आपसे ही सबसे पहले।
1: शुआए उम्मीद, उम्मीद की किरण।
0: क्या बात है आशीष जी।
1: तन्हाई।
0: जी नील जी आपसे भी सवाल है।
3: मेरा मानना है कि शायरी या जो भी ख्याल होते हैं,
0: हाँ जी,
3: वो खामोशी की आवाज होते हैं,
1: आहा,
3: जो चीख चीख के बोलते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, और हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए और इतना वक्त मुझे दिया, वंस अगेन थैंक यू।
1: शुक्रिया आपका,
4: शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
0: और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बातें तू कभी ना ये भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। वैसे हम सब किसी ना किसी की खातिर जी रहे हैं। जब शादी हो जाती है तो हम कहते हैं कि रहना तो मैं नहीं चाहती थी, ये तो सिर्फ बच्चों की खातिर मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। या फिर जो प्यार में होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें बर्दाश्त करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे प्यार की खातिर मैं जी रही हूँ। तभी तो ऐसे गाने बनते हैं कि तुम्हारी खातिर जी रहा। तो आप किसकी खातिर जी रहे हैं ये मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। सपना हूँ मैं आपके साथ और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो खुद को स्टार कभी भी नहीं कहती थी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, आज हम किसी स्टार की बात नहीं करते,

दिया और एक के बाद एक इन्हें सुपरहिट फिल्म्स मिलने लगी। लेकिन देखते ही देखते कब इनकी जर्नी मेन रोल से निकलकर कैरेक्टर रोल्स में चली गई इन्हें पता ही नहीं चला। बहुत तड़पने के बाद, बहुत छोटी मोटी फिल्मों में काम करने के बाद आखिरकार इन्हें समझ आ गया कि मेरी दाल ऐसे नहीं गलेगी, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया और आखिरी के दिनों में अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजारी। खैर, ये तो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ब्रीफ स्टोरी थी आज की अदाकारा की। इस पे खुल कर बात करेंगे थोड़ी देर में। अगर आपको इस एक्ट्रेस के बारे में पता है या थोड़ी सी हिंट आपको मिल चुकी है मेरी बातों से, तो अपना फोन उठाइए और मुझे बताइए। नंबर है मेरा 9654896896। आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं इस कलाकार का नाम। तब तक आप एंजॉय कीजिए लता मंगेशकर जी की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसे प्रीति जिंटा पर पिक्चराइज किया गया था। गाना है दिल से फिल्म से।

0: 6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ सदाबहार गीत।
1: हरियाणवी गानों की बीट पे थिरकना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।
2: सारा शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से जानता है।

उषा उत्थप जी की आवाज में ये गाना बिल्कुल ही बदल गया और सच में कितना खूबसूरत लग रहा था ये गाना, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। इससे पहले हमने इस गाने को लता दी की आवाज में सुना है और तब भी ये गाना बहुत खूबसूरत लग रहा था और उषा जी की आवाज में भी ये गाना बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसा आप मुझसे कहना चाहते थे और मुझे थैंक यू करना चाहते थे क्योंकि मैंने आपको ये गाना सुनाया। सो स्वीट, मैंने आपकी बात सुन ली है और आपका थैंक यू भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही आपको बता दूं कि मेरे पास इतने सारे कॉल्स और इतने सारे टेक्स्ट आए लेकिन सबका जवाब गलत था। किसी ने कहा कि ये माला सिन्हा थी तो किसी ने कहा ये निरूपा रॉय थी। मैं आपको बता दूं कि ये इनमें से कोई भी नहीं थी। आज मैं जिस कलाकार की बात करने जा रही हूँ वो थी नादिरा, जो कि 5 दिसंबर 1932 में बगदाद में पैदा हुई। शुरुआती दौर में इन्हें नाम दिया गया फरहाद, जो कि बाद में बदल कर फ्लोरेंस हो गया। और जब ये आई इंडिया अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ आकर इन्हें एक और नया नाम मिला। वैसे आई तो ये काम की तलाश में थी। इनके परिवार में कुल 14 मेंबर्स थे और इनके पेरेंट्स की ड्यू टू सम डिसीज डेथ हो चुकी थी, तो इन्होंने सोचा बगदाद में अब इनका कोई रिश्तेदार बचा नहीं है, इसलिए ये भारत आ गईं और यहाँ आकर लोगों ने दिल खोल कर इनका स्वागत किया। 15-16 साल की उम्र में ही इन पर निगाह पड़ी थी डायरेक्टर महबूब खान की वाइफ सरदार अख्तर जी की, जिन्होंने इस बच्ची के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा को देखा और उन्होंने सोचा कि चलिए इस हीरे को तो मैं ही तराश देती हूँ। इन्होंने फ्लोरेंस को ट्रेन करना स्टार्ट किया और साथ में उन्हें एक तोहफा भी दिया। ये तोहफा था उनकी नई पहचान, उनका नया नाम जो था नादिरा। और इसी नादिरा को पहली फिल्म भी दिलाने वाली हमारी अख्तर साहिबा ही थी, जिन्होंने महबूब खान तक नादिरा को पहुंचाया। अब हम इसे नादिरा की किस्मत कहें या फिर इत्तेफाक कहें कि उसी दौरान महबूब खान अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। वैसे मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूं कि इस फिल्म की एक्ट्रेस का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि उन्हें रिप्लेस किया जाना था एक नई एक्ट्रेस से और वो नई एक्ट्रेस बनी नादिरा। वैसे वो कौन सी एक्ट्रेस थी जिनकी रिप्लेसमेंट इन्हें बनाया गया था ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले वक्त हो चला है एक बहुत ही खूबसूरत से गीत का। ये वो गीत है जिसने ना केवल उस वक्त बल्कि आज के दौर में भी नौजवानों के दिल की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। गाना है नूरी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।
3: निकाल दी बिना मिले तुमसे और ये लोग हमें इश्क करना सिखा रहे हैं।
4: तू क्या जाने मेरे यार है।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कुछ सदाबहार गीत।
4: जब तकती हूँ कह ना सकती हूँ।
3: लाइफ ऑन व्हील्स, जहाँ जिंदगी है वहाँ हम हैं। मैं हूँ एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियाँ आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
5: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कहना ही क्या, ये नयन एक अनजान से मिले। चित्रा की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जिसे बॉम्बे फिल्म से लिया गया था और इसे पिक्चराइज किया गया था खूबसूरत मनीषा कोइराला जी पर। बहुत ही प्यारा सा गाना जो आज भी हमें मुंह जुबानी याद है। रेडियो महारानी में आपका वेलकम है जी। रात बाकी बात बाकी शो चल रहा है, सपना हूँ मैं आपके साथ। वैसे आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी वैम्प की, जिनकी एंट्री तो बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस हुई थी और एंट्री क्या धमाका था, क्योंकि महबूब खान की फिल्म आन में इन्हें लिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि आन फिल्म के लिए पहले नरगिस जी को साइन किया गया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से नरगिस जी ये फिल्म नहीं कर पाई। अब महबूब साहब उन्हें रिप्लेस करना चाहते थे, तो उन्होंने नादिरा, जिसमें उन्हें नरगिस जी की थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन नजर आती थी, इसलिए उन्होंने इस नई लड़की को अपनी फिल्म में लॉन्च किया अगेंस्ट दिलीप कुमार साहब। निम्मी भी इसी फिल्म में थी और देखते ही देखते जब ये फिल्म थिएटर्स में पहुंची तो एज एन एग्रेसिव प्रिंसेस हर किसी ने इनका रोल पसंद किया और ये फिल्म हुई सुपर डुपर हिट। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो फिल्म थी आन, इस फिल्म की एक हाईलाइट तो दिलीप कुमार साहब ऑफ कोर्स थे, लेकिन दूसरी हाईलाइट ये थी कि ये उस दौर की सबसे ज्यादा बजट में बनने वाली फिल्म थी। ऑलमोस्ट 35 लाख में इस फिल्म को बनाया गया था और इस फिल्म के हिट होते ही नादिरा, जो कि अब तक स्ट्रगल कर रही थी कुछ पैसे कमाने के लिए, उसको 1200 मंथली की सैलरी पर हायर कर लिया गया। ये उस दौर की बात है जब एक्ट्रेस को प्रोडक्शन कंपनीज अपने अंडर हायर किया करती थी। दूसरी फिल्म साइन हुई, तीसरी फिल्म साइन हुई और देखते ही देखते इनका अमाउंट भी बढ़ता रहा और ये अमाउंट पहुंच गया 3000 रुपए तक। जैसे ही ये अमाउंट नादिरा के हाथ में पहुंचा तो उन्होंने महबूब साहब से रिक्वेस्ट की कि क्या अपनी गाड़ी में आप मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर देंगे। और मार्केट पहुंचते ही लाइक ऑल अदर फीमेल्स नादिरा जी ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये भी कहते हैं कि उन्होंने 12 गोल्ड बैंगल्स खरीदी, जो कि आज के रेट के हिसाब से बताऊं ना तो कुछ भी नहीं आएगा उसमें, बिकॉज गोल्ड का प्राइस कहाँ है ये तो हम सब जानते हैं। खैर चलिए वापस चलते हैं उसी दौर में। मैं बह गई थी सोने में, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने फर्नीचर खरीदा जिसमें मेनली इन्होंने जो बेड पे कंसंट्रेट किया था, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि ये हमेशा से ऐसा सोचती थी कि मैं एक प्रिंसेस की तरह रहना चाहती हूँ, सोना चाहती हूँ। तो इन्होंने जब बेड खरीदा तो अपने रूम में शिफ्ट किया और वहां अपनी माँ को कहा कि अब मैं प्रिंसेस की तरह सोऊंगी इस बेड पर खुलकर। और ये भी कहा जाता है कि वो जो 12 बैंगल्स इन्होंने खरीदी थी वो भी हमेशा अपने साथ में रख के सोती थी और रोज रात को शूटिंग के बाद घर आकर वो उन बैंगल्स को गिना करती थी कि बैंगल्स पूरी है ना, और फिर साइड टेबल में रखकर सो जाया करती थी। क्या बात है, कुछ लोग बड़े अलग से होते हैं ना, कुछ हटके टाइप्स। तो नादिरा जी भी कुछ हटके ही थी। तो चलिए अब जब सब कुछ हटके हो ही रहा है तो हटके गाना भी सुन लेते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।
2: लोग कहेंगे इश्क है तुमसे, पर तुम उसका नाम याद रखना। अगर वो खो गया कहीं तो तुम भी इश्क सलामत रखना।

और इस मस्तानी शाम का आप सभी लुत्फ उठा रहे हैं सपना के साथ ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, जहां आज हम बात कर रहे हैं नादिरा जी की, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में धमाका सा मचा दिया था और बैक टू बैक उन्हें बहुत सारी फिल्म्स ऑफर होने लगी। यहाँ तक कि उनकी जो सैलरी, जो वेजेस थे, वो भी डबल ट्रिपल होने लगे थे। अब तभी उनके हाथ में आई वो फिल्म जिससे उन्हें लोगों का प्यार तो मिला, लेकिन साथ ही वही फिल्म उनके करियर के लिए बन गई घातक। फिल्म का नाम था श्री 420, जिसमें राज कपूर साहब ने उन्हें बहुत ही अच्छा रोल ऑफर किया था और उसका एक गाना बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। गाना था मुड़मुड़ के ना देख मुड़मुड़ के। जी हाँ, ये गाना इतना खूबसूरत था, इतना अच्छे तरीके से इसे पिक्चराइज किया गया था और इस गाने में ये एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में नजर आई थी। और क्या आप जानते हैं कि जब ये फिल्म बन के रिलीज हुई, गाना सुपर डुपर हिट हुआ, खैर फिल्म भी हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद तो मैंडेटरी हो चुका था कि ये जिस भी फिल्म में कोई भी रोल करेंगी तो एक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनना इनको पड़ता ही था। जबकि ये पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की डिमांड होती थी कि नादिरा जी को ब्लैक कॉस्ट्यूम जरूर पहनना है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वैसे सिर्फ ये एक डिमांड नहीं थी, बल्कि एक और भी डिमांड की जाती थी कि वो जब भी साड़ी ड्रेप करें अपनी नेवल के नीचे करें, ताकि वो और ज्यादा खूबसूरत लगें। और इसके लिए प्रोड्यूसर्स उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थे। कैसे कैसे लोग हैं और कैसी कैसी डिमांड्स है यार। ये गाना तो हिट हुआ, लेकिन साथ ही लोगों का नजरिया नादिरा की ओर कुछ बदल सा गया, क्योंकि अब हर कोई इन्हें वैम्प के रोल में देखना चाहता था और एक आध गाना इन पर पिक्चराइज हो जाता था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं ये अपनी रोल्स में कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो भी लीड रोल की फिल्म्स इन्हें मिलेंगी, ये उसे साइन कर लेंगी। इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारी बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, जो कि इन्हें पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि इन्हें काम करना पड़ता था, क्योंकि ये अपने फैमिली की द वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर थी और उन सब का पेट भरने के लिए इन्हें ऐसी कई बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा, जब तक इन्हें एक और फिल्म नहीं मिली। ये फिल्म इनके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन अगेन इस फिल्म ने लोगों का इनकी तरफ नजरिया बदल दिया। कौन सी थी ये फिल्म बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले कुछ खत पढ़ लेते हैं। अरे जो खत आपने मुझे लिखे हैं अभी भी नहीं समझे, चलिए गाना सुन लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे।

0: अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है, तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।
1: पुष्पा, I hate water wasting rain। जा जाके टंकी बंद कर।

0: बड़ा है मुश्किल में।
1: चल अर्जुन शुरू हो जा।
2: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
1: इरशाद,
2: अरे आगे खाली हो जाएगी।
1: क्या
2: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
1: कौन है?
2: रोडवेज वाले।
1: ओके ओके,
2: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ।
2: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
2: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
2: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इस गाने को सुनकर आपको किसी की याद आई, किसी को अपने हम सफर की याद आई होगी या किसी को अपने प्यार की याद आई होगी, लेकिन मुझे याद आई मेरी हिंदी टीचर की, जो कि मुझे संधि विच्छेद करना सिखाती थी। और दिल में मेरे है दर्दे डिस्को, तो मैं दर्दे डिस्को वाला जो शब्द है ना उसको उठाती हूँ और उसका करती हूँ संधि विच्छेद। तो मेरे पास दो शब्द आते हैं, दर्द और डिस्को, जिनका आपस में कोई रिलेशन मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि जिसको दर्द होगा वो डिस्को नहीं करेगा और जो डिस्को कर रहा होगा उसको फिजिकली कोई दर्द हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेंटली कोई दर्द हो रहा है आई डोंट नो कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, अरे दो शब्दों को मिलाकर अगर हमारी डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ रहा है तो इसमें हर्ज भी क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी हिंदी टीचर को एक बार फिर से याद कर लेती हूँ और दर्दे डिस्को की जगह आप सबका खुश डिस्को के साथ स्वागत कर देती हूँ एक बार फिर से रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मुझे खुद ही बोले हुए शब्द पर बहुत हंसी आ रही है, खुश डिस्को। लेकिन जब दर्दे डिस्को हो सकता है तो खुश डिस्को क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए इसी खुश डिस्को के साथ आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेडियो महारानी पर। आज रात बाकी बात बाकी में मैं सपना बात कर रही हूँ नादिरा जी की, जो कि बगदाद से आई थी और यहाँ आकर उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में काम किया। पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उसी के बाद इन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आए और फाइनली राज कपूर साहब ने भी इन पर ट्रस्ट किया और इन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। फिल्म का नाम था श्री 420 और इसका एक गाना बहुत ही खूबसूरत था, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। ये गाना तो पिक्चराइज था नादिरा पर इसे अपनी आवाज से संजोया था लता मंगेशकर जी ने। यही कॉम्बिनेशन हमने पहले भी एक फिल्म में देखा था जो कि 1949 में रिलीज हुई थी। कमल अमरोही साहब की ये पहली डायरेक्टेड फिल्म थी जिसमें अशोक कुमार और मधु बाला जी एक साथ नजर आए थे। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत नादिरा पर पिक्चराइज हुआ था को भी, और इस गाने को भी अपनी आवाज दी थी लता दी ने। गाना था आएगा आने वाला, बहुत ही प्यारा सा गीत था के करियर में और ये गीत लता दी के करियर में एक माइलस्टोन साबित हुआ। इसके बाद उनके करियर की गाड़ी बुलेट की स्पीड से भागने लगी थी। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमने अलग अलग फिल्मों में देखे और हर फिल्म में इनका कोई ना कोई गाना ऐसा था जो कि सुपर डुपर हिट हो जाता था, जिसे आज भी हम सुनते हैं तो लगता है कि अभी कल परसों में ही ये गाना रिलीज हुआ है। महल फिल्म सिर्फ एक गाने के लिए नहीं बल्कि एक और भी रीजन से नादिरा जी की लाइफ में बहुत स्पेशल रोल प्ले कर रही थी। यही इसी फिल्म के सेट पर उन्हें मिला था उनका पहला प्यार। कौन था ये और कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक चलिए हम और आप थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेते हैं। कहाँ चलेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद। मेरे

0: आमन में आती है, कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा बहुत स्मूथ चल रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि बुरा वक्त कहीं आसपास ही डोल रहा है और आपकी लाइफ में आने को तैयार है। ऐसा ही कुछ नादिरा के साथ भी हुआ। 1949 में आई फिल्म महल में इनकी मुलाकात हुई नक्शाब साहब से, जो कि पेशे से एक लिरिसिस्ट थे और उनकी पहचान इंडस्ट्री में बनी थी। 1945 में आई फिल्म जीनत में एक बहुत ही खूबसूरत सी कव्वाली थी जिसे अपनी आवाज दी थी नूरजहां जी ने, और इसके बोल थे आहें ना भरी शिकवे ना किए, और ये बोल देने

गया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नादिरा और नक्शाब साहब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। देखते देखते ये दोस्ती प्यार में बदली और प्यार से शादी में। लेकिन शादी होते ही नक्शाब साहब का जो बिहेवियर था नादिरा की ओर, वो थोड़ा सा बदल गया। नादिरा से उनकी पैसों की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती गई। ये भी कहा जाता है कि दरअसल उन्होंने ये शादी प्यार के चलते नहीं बल्कि नादिरा की सक्सेस के चलते की थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाना चाहते थे और एज अ डायरेक्टर अपने आप को इंडस्ट्री में प्रूव करना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। तो वो सपोर्ट इन्हें नादिरा में दिखा। शादी के बाद नक्शाब साहब ने नादिरा पर प्रेशर बनाया कि वो महमूद साहब के साथ हुए एग्रीमेंट को तोड़ दे और उनके साथ कोई फिल्म ना करे, ताकि उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों में नादिरा काम करे। दो फिल्में भी बनाई, नगमा और रफ्तार, और ये दोनों फिल्में फ्लॉप रही। इसके बाद उन दोनों के बीच अनबन थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन इस लेवल पर भी नहीं थी कि दोनों का रिश्ता टूट जाता। हद तो तब हुई जब एक बार नक्शाब साहब एक फीमेल को लेकर घर पहुंचे और ये फीमेल कोई और नहीं बल्कि वो लेडी थी जिनके साथ ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। ये बात नादिरा को पसंद नहीं आई और वो बिना कुछ कहे बिना कुछ लिए वहां से चुपचाप चली गई। इसके बाद उन्होंने नक्शाब साहब की जिंदगी में और उस घर में कभी भी झांक कर नहीं देखा। बॉलीवुड से उन्हें अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो चुकी थी। उनकी छवि कुछ ऐसी बन चुकी थी कि उन्हें नेगेटिव रोल्स ऑफर हो रहे थे और वो अपने आप को एज अ वैम्प इंडस्ट्री में देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया जिसमें उन्हें लीड रोल ऑफर हो रहा था। कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने अपने करियर की बहुत बड़ी गलती की, इसलिए उन्होंने उन बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया। आगे क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगी। फिलहाल क्या इन्हें मिली बॉलीवुड में अच्छी फिल्म्स, या फिर इन्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कुछ फिल्मों के साथ, क्या इन्हें मिला अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। पहले जान लेते हैं कि इस दिल में रखा क्या है।

0: समझते क्यों नहीं?
1: क्या समझो नैना?
0: तुम समझते क्यों नहीं कि कभी कभी पानी को बचाने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, वरना पानी का पंगा हो जाएगा।
2: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो मानानी 89.6।

फिल्मों में काम मिलना भी कम हो गया। ये हार्ट ब्रेक नादिरा झेल ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए वापस अपने देश बगदाद पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने एक अरेबियन से शादी की। पर ये शादी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि वो अरेबियन ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर में था, जिसका पता इन्हें शादी के बाद चला। इसलिए ये शादी भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाई और उनसे भी डिवोर्स हो गया। अपना टूटा दिल लेकर नादिरा फिर पहुंची भारत और यहाँ आकर उन्होंने जब बॉलीवुड की तरफ देखा तो इन्हें पता चला कि अब जो नेगेटिव रोल्स भी ये कर रही थी, अब वो भी इन्हें मिलने बंद हो चुके थे। इसलिए ये इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ गई तो ये कुछ गलत चीजों को कंज्यूम करने लगी, जिसकी वजह से इन्हें इंसोमनिया जैसी प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ा। पर कहते हैं ना कि पेट की आग बहुत बड़ी होती है बाबू मुशाए, और अपनी इसी पेट की आग को बुझाने के लिए इन्हें फिर से फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इन्हें नेगेटिव रोल्स तो मिल नहीं रहे थे, इसलिए इन्होंने कैरेक्टर रोल्स करना स्टार्ट कर दिया और उसमें भी माँ के रोल्स इन्हें ज्यादा ऑफर हो रहे थे। जैसे ही नादिरा ने माँ के रोल्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स लाइन लगाकर इनके घर के बाहर खड़े हो गए और बैक टू बैक इन्हें बहुत सारी फिल्में एज अ मदर ऑफर होने लगी। पहली फिल्म जो इन्होंने की थी वो थी 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर, और उसके बाद की इन्होंने कहीं दिन कहीं रात। उसके बाद तो इन्होंने इतनी सारी फिल्म्स की और फिर आई वो फिल्म जिसके लिए मिला इन्हें इनके करियर का पहला और आखिरी फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। फिल्म थी जूली, लेकिन उससे पहले इन्होंने हंसते जख्म, अमर अकबर एंथनी, पाकीजा ऐसी कई फिल्मों में मदर रोल प्ले किया था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मदर रोल था वो भी नेगेटिव ही रोल इन्हें मिलता था। कभी स्टेप मदर होती थी तो कभी माँ, तो वो भी खड़ूस वाली, वो वाले रोल्स इन्हें ऑफर हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने काम को काम समझा और अपने हर रोल को इन्होंने बखूबी निभाया। पर वो कहते हैं कि ये सिलसिला भी चलता तो कब तक चलता। आखिर वो दिन आ ही गया जब इन्हें वो रोल्स भी मिलने बंद हो गए, इसलिए इनका रुझान हुआ किसी और इंडस्ट्री की ओर। कौन सी थी वो इंडस्ट्री, बता दूंगी इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। बड़ा न करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा न करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा न करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा न करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

अक्सर अपने करीबी लोगों से नादिरा यही लाइनें कहा करती थी, जिसमें हिज्र का मतलब है जुदाई की रात और मुस्तरिफ का मतलब है दिल की तकलीफ। वो इतनी बार दिल तुड़वा चुकी थीं कि अब उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। दोनों शादियों में सक्सेसफुल ना होने की वजह से इन्हें लगने लगा था कि अब इनकी जिंदगी में प्यार नहीं आएगा, पर एक्टर मोतीलाल के रूप में इन्हें प्यार नजर आया। र्यूमर्स कुछ ऐसे थे कि इन दोनों का रिलेशनशिप काफी लंबे वक्त तक चला, पर मोतीलाल जी ऑलरेडी मैरिड थे इसलिए ये रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया और ये रिलेशनशिप भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से एक बार फिर से इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा। और कहते हैं कि जब दिल टूट जाता है तो हमें अपने लोगों की बहुत जरूरत होती है, और इसी वक्त में इनके अपने इनका साथ देने की बजाय इन्हें छोड़कर वापस अपने वतन चले गए, जिस वजह से ये एक बार फिर से अकेली हो गई। लेकिन कहते हैं कि जहाँ रिश्तेदार नहीं पहुँचते वहाँ हमारे दोस्त पहुँच जाते हैं। इनकी भी कुछ ऐसे ही दोस्त थे जिसमें निम्मी, शमा, माला सिन्हा और निरूपा रॉय शामिल हैं, और इन्होंने इन्हें बहुत बूस्ट किया, इनकी डिप्रेशन को काफी हद तक कम किया और एक बार फिर से काम करने की सलाह दी। लेकिन फिल्मों में अब जो इन्हें रोल्स ऑफर हो रहे थे वो इतने छोटे होते थे और उनका अमाउंट भी इतना छोटा होता था, जिससे नादिरा अपना रोजमर्रा का खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए मजबूरन इन्हें टीवी इंडस्ट्री की ओर रुख करना पड़ा, जहां इन्होंने मार्गरीटा, एक था रस्टी सीजन 1, थोड़ा सा आसमां इन सीरियल्स में अपीयर किया, और क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में डेली वेजेस मिलते हैं तो इन्हें काफी सपोर्ट मिला। लेकिन ये भी कब तक चलता, नींद इन्हें आती नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा।

2000 में आई फिल्म जोश बनी इनके करियर की आखिरी फिल्म, जिसमें इन्होंने लेडी डिकोस्टा का रोल प्ले किया था। इंसोम्निया की प्रॉब्लम के चलते इन्हें और भी मल्टीपल डिसीजेस का सामना करना पड़ा और इन्हें इसी लंबी डिसीज के बाद हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, जहां इन्होंने 9 फरवरी 2006 को आखिरी सांस ली। एक लंबे फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में अपीयर करने के बाद नादिरा ने अपनी हर तकलीफ को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इसी के साथ अंत हुआ एक ऐसी शख्सियत का जिसने लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन अपने काम पर कभी भी इसका असर नहीं पड़ने दिया और उनके ऊपर पिक्चराइज कुछ खूबसूरत गीत आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। जैसे हम देवानंद साहब को याद करते हैं क्योंकि उनके ऊपर ये बैन था कि वो कभी भी ब्लैक सूट पहनकर बाहर नहीं आएंगे, वैसी ही एक शख्सियत बनी नादिरा, जिन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपनी हर फिल्म में एटलीस्ट एक बार ब्लैक ड्रेस जरूर पहनेंगी और इसके लिए उन्हें कितना ज्यादा पे भी किया जाता था। खैर अब सब बातें रह गई हैं, लेकिन आज उनके बारे में बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने भी इस एपिसोड को बहुत ज्यादा पसंद किया होगा और हमने नादिरा के कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के भी जवाब आपको दिए होंगे जो कि आप अब तक सुलझा नहीं पाए थे। कहते हैं कि हर शख्सियत जो इस इंडस्ट्री में या फिर इस दुनिया में आती है वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। कई बार दिल टूटा नादिरा का, लेकिन उसके बावजूद भी ये जितनी भी फिल्मों में आई इन्होंने ये बताया कि आपकी मेहनत पर आपके टूटे दिल का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ ऐसी ही खूबसूरत सीखों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है मेरा स्टूडियो से जाने का। जाऊंगी तभी तो वापस आऊंगी, इसलिए अब दीजिए इजाजत और अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूबसूरत गीतों के साथ।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी, जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।
4: कुछ

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

इंसानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जैसा है।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना बना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: का यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: है जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: साइबर क्राइम से जा।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: सानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही तो हो, ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यहाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी

0: में एक खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिलौती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: महंगा है
1: लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।

मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी, उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है। रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा कुछ राधा नामयु कार्यम हनुदिन मिलतम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग

उन मोहिलिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा, बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है वृंदावन। यहाँ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहाँ आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लगोटी धोते पाए गए, पाए क्या क्या। आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना